मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि तदनुसार दिनांक 25 मई 2026 दिन सोमवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन, जीवन क्षणभंगुर। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का है।
1: क्षणभंगुर एहि अल्पकालीन जीवन में मनुष्य सत्कर्म दिस प्रवृत्त नहि भ स्वार्थवश दिग्भ्रमित भ जाय आ कुमार्ग दिस उन्मुख होइ छै। सत्कर्म नहि केनिहार के जीवनक संध्या वेला में पश्चाताप होइ छैक। जीवन भरिक अपकर्म स्मरण होमय लागै छै आ

0: ओ घोर मानसिक अवसाद सँ ग्रस्त भऽ जाइ छै। जँ लोक स्मरण राखै जे जीवनावधि सीमित आ अनिश्चित अछि, प्राण वेला शांतिमय हो तऽ ओ दुष्कर्म सँ बचबाक प्रयास करत। केओ दुरात्मा कोनो साधक लग गेल आ पुछलकै, कतबो प्रयास करै छी जे दुष्कर्म नहि करी, मुदा तैयो दुष्कर्म भइए जाइ अछि, दुष्कर्म सँ बचबाक कोन उपाय कयल जाय? साधक किछु नहि बाजथि। बारम्बार ओ व्यक्ति हुनका लग आबि इएह प्रश्न कयल करै, दुष्कर्म सँ कोना बाँची। एक दिन साधक ओकर हाथ अपना हाथ में लऽ ध्यानपूर्वक ओकर हस्तरेखा देखऽ लगलाह। किछु क्षणक बाद बजला, तो एक मासक उपरांत संसार में नहीं रहबह। ई सुन ओ व्यक्ति उदास भऽ गेल, चुपचाप घर आयल। 29 दिन पर्यंत ओ दुख, पश्चाताप, अवसाद आ मानसिक क्लेशक स्थिति में रहल। जीवन में कहियो ओ ईश्वर चिंतन नहीं केने छल, किंतु एहि 29 दिन में ओ अनेक बेर ईश्वरक चिंतन केलक, भजन कीर्तन केलक, ततबे नहि ओ आर्त आ दुखी जनक हितार्थ अपन संपत्ति सेहो दान करऽ लागल। 30 दिन साधक ओकरा बजबौलखिन, ओ आयल, साधक लग बैसल। ओकरा मुखमंडल पर उदात्त भाव विद्यमान छलैक, निर्वेद जन्य अन्य आभास ओकर मुखमंडल दमकि रहल छलैक। पुछलखिन, कह की केला? कोनो दुष्कर्म नहि केला। ओ व्यक्ति मास दिन का अपन जीवनचर्या हुनका सुना देलकनि। मासो दिन ओ सत्कर्मे में बितौने रहै, दुष्कर्म एकोटा नहि केने रहै। बाजल, एहि मास में एकोटा दुष्कर्म नहि केलौं, चित्त पर तऽ सर्वदा मृत्यु भय सवार रहै, पापकर्म दिस प्रवृत्ति होइते कोना? साधक बजला, तो सदैव पाप साप बचबा पै पूछै छला, उत्तर तोरा भेट भेट। सर्वदा स्मरण राख जे दिन प्रयाण करब ध्रुव छैक, जे जन्म लेलक अछि ओ मरबे कभे करत। तैं एहि संक्षिप्त अचित जीवन के दुष्कर्म में नहि व्यतीत कऽ कऽ सड़क नहि व्यतीत कयल जाय। ओहि दिन सँ ओहि व्यक्तिक जीवन दिशा बदलि गेलै, ओ दुरात्मा सँ महात्मा बनि गेल।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी दरभंगा से। अब सुनिए कृषि चर्चा। कृषि यंत्र ट्रैक्टर की देखभाल, वाचन स्वर मिहिर कुमार झा का है।
2: किसान भाई लोग, नमस्कार। आजुक कृषि चर्चा के संग हम मिहिर कुमार झा। आजुक कृषि चर्चा में अपना सब गप करब कृषि यंत्र ट्रैक्टरक देखभाल। किसान भाई लोग, अपना सब देखै छी जे कृषि कार्य में ट्रैक्टर अपना सबक लेल कतेक उपयोगी साबित भेल अछि। अपना सब जखन परंपरागत ढंग से खेती करै छलहुँ तऽ खेतक जुताई कुराई के लेल हर बरक हर आ बरदक उपयोग करै छलहुँ। एहि हर बरद से अपना सबके भरि दिन में 5-7 कट्ठा मात्र खेत के एक या दू चास कऽ पबै छलहुँ। ताहि मे समय के संग संग फ्रीसानियो सेहो बहुत होइ छल। परंज आब तऽ कृषि यंत्र ट्रैक्टर के उपयोग सँ अपना सब जे काज घंटों में करै छलहुँ से आब मिनटों में कऽ लै छी। आब तऽ ट्रैक्टर से बीघा के बीघा एक दिन में, ताहि मे जँ रोटावेटर से जोतै छी तऽ जल्दिए नीक जगह खेत तैयार सेहो भऽ जाइत अछि। किसान भाई लोकनि, ई जे कृषि यंत्र ट्रैक्टर जे अपना सभक खेती बाड़ी में एतेक उपयोगी अछि, ओकर देखरेख जँ नीक जकाँ करैत रहब तऽ ओ सब दिन अर्थात बरखो बरख काज दैत रहत। ई ट्रैक्टर के दाम तऽ सेहो अपना सब बुझै छी जे कतेक छै। एहि लेल किसान भाई लोकनि, कृषि यंत्र ट्रैक्टरक उम्र बढ़ै के लेल ओ सदिखन नव जकाँ परफॉर्मेंस दैत रहै, एहि के लेल ओकर नियमित देखभाल सेहो आवश्यक अछि। ओकर रखरखाव जे छै ओ सेहो बड़ जरूरी छै। अपना सबके ई देखरेख में कोताहित करबै तऽ खेती मे जे ट्रैक्टर धोखा दऽ देत, ओ ताक पर ट्रैक्टर नहि चलत तऽ खेती बाड़ी मे फ्रीसानी भऽ जायत,

0: आ नीक समय में जँ खेती खेतक जोताई नहि करबै तऽ ओ फसल ओतेक बढ़िआँ नहि भऽ सकैत अछि। किसान भाई लोकनि ट्रैक्टरक देखभाल के लेल किछु खास बात पर ध्यान दैक आवश्यक अछि, जेनाकि इंजन आयल के जाँच करब। सब दिन ट्रैक्टर से काज शुरू करबा से पहिने डिपस्टिक सँ इंजन आयलक लेवल जरूर देख लेबाक चाही। ओकर बाद एयर क्लीनर जकरा फिल्टर कहै छियै ओकर सफाई करब सेहो आवश्यक छै। सूखा एयर क्लीनर के हवा से आ आयल बाथ टाइप के डीजल से साफ करक चाही, किएक तँ खेत जोतै काल में माटिक धूरा सब खूब उड़ैत रहित छै। एहि तरह रेडिएटर में पानिक जांच सेहो करबाक चाही। किसान भाई लोकनि भोर के जखन ट्रैक्टर स्टार्ट करै छी तँ स्टार्ट करै से पहिने रेडिएटर में कूलेंट आ साफ पानिक स्तर के जांच कऽ लेबाक चाही। ट्रैक्टरक सफाई किसान भाई लोकनि बड आवश्यक छै। अपना सबके बुझल अछि जे सफाई के महत्व सब जगह परमावश्यक छै। एहि तरह ट्रैक्टरक सफाई से जरूरी छै जे काज करै से पहिने ट्रैक्टर पर लागल माटि वा गर्दा जे छै या घास छै कचरा छै एहि सब तरहक जे छै ओकरा साफ कऽ लेबाक चाही। खास कऽ के रेडिएटर ग्रिलर नजदीकसँ जाहिसँ ट्रैक्टरक इंजन ओवरहीट नहि होइ। किसान भाई लोकनि एहि तरह ट्रैक्टरक देखभाल नियमित करक चाही। ट्रैक्टर से काज करै से पहिने ई देखरेख अवश्य कऽ ली। किसान भाई लोकनि ट्रैक्टरक देखभाल किछु पार्ट्स के साप्ताहिक जांच सेहो करब आवश्यक अछि, जेना ग्रीसिंग। किसान भाई लोकनि फ्रंट एक्सेल रेडिएटर ज्वाइंट पीटीओ शाफ्ट आ रोटावेटरक जतय घुमै वाला पार्ट्स मे ग्रीस जे छै 7 दिन पर अवश्य ओकरा देख लेबाक चाही, ओहिमे ग्रीस छै कि नहि छै। एहि तरह किसान भाई लोकनि सप्ताहमे एक दिन टर्मिनलके सफाई सेहो करब आवश्यक छै। बैटरीक टर्मिनलके जंगसँ बचबैके लेल ओकरा गरम पानि वा बेकिंग सोडासँ साफ कऽ देबाक चाही। पुनः साफ कयलाके बाद ग्रीस आ पेट्रोलियम जेली जे छै ओहिपर लगा देबाक चाही। किसान भाई लोकनि ट्रैक्टरक चक्कामे हवाके दबाव सदिखन उचित रहए एहिपर सेहो ध्यान देबाक चाही। एहि तरह किसान भाई लोकनि बरसात आब समय आबि रहल बरसातक समय। बरसातक मासमे हवामे नमी बेसी रहै छै तँ ट्रैक्टरके जंगसँ बचबैके लेल ओकरा प्लास्टिक कवरसँ झाँपि कऽ रखबाक चाही, जाहिसँ ओहिमे जंग नहि लागत, ट्रैक्टर सब दिन ऊपरसँ नया देखैत रहत। आ ई जे सब दिन ओकर साप्ताहिक जाँच या प्रतिदिनक जाँच करैत रहबै तँ ट्रैक्टर सब दिन बढ़िआँ परफॉर्मेंस देत, नीक चलत। एहि तरह किसान भाई लोकनि कहल जाइ छै जे किनी अमीर जकाँ आ राखी गरीब जकाँ, अर्थात जखन कोनो चीज कीनऽ लागी तँ ओरिजिनल पार्ट्स लगाबी। नीक चीज किनबासँ परहेज नहि करी, नीक चीज किनबाक चाही, ओकरा नीक जकाँ रखबाक चाही। एहि तरह आजो कृषि चर्चा सम्पन्न भेल। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री।

0: अलंकार हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, हार्ट अटैक। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण।
4: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण से जानकारी प्राप्त करते हैं हार्ट अटैक यानी हृदय आघात के बारे में। डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, ये हृदय आघात यानी हार्ट अटैक है क्या?
5: हार्ट अटैक का

0: कारण है कि जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है ब्लड, उसमें रुकावट हो जाना, सडनली बंद हो जाना, और वो बंद होने के कारण जो हार्ट को सप्लाई कम से कम हो जाता है, इस कारण से छाती दर्द ये सब होने लगता है, ये हार्ट अटैक है आपका।
1: कारण क्या है?
0: जो 90% जो कारण है वो है प्लाक, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना हार्ट में, और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का फट जा जमा होकर फट जाना, इस कारण सडनली वो बंद हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे मेन कारण होता है हार्ट अटैक वाले का।
1: कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी?
0: चर्बी, चर्बी।
1: सिम्टम्स क्या है, लक्षण?
0: लक्षण में जैसे छाती में दर्द होना, छाती में ही नहीं, आपका जबड़ा से लेके पेट के अपनी ऊपर हिस्सा तक दर्द होना हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको दोनों बाहों में दर्द होना, खासकर बाएं बाहों में दर्द होना, पीछे दर्द होना, बैक में दर्द होना, कहीं भी आपको ऊपरी छाती के आसपास में बाह के रीजन में दर्द होता है, ये हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको अत्यधिक गैस बनना, गैस भी लक्षण है। तीसरा चीज़ जो है वो पसीना आना, सडनली पसीना आ रहा है, आप बेहोश हो रहे हैं सडनली, आपका सांस फूल रहा है, तो ये सब अमूमन लक्षण होता है हार्ट अटैक का।
1: हार्ट अटैक के लिए खतरे की बातें क्या है?
0: सबसे जो रिस्क फैक्टर जेनेटिक होता है, हमेशा हम पूछते हैं कि भाई आपको फैमिली हिस्ट्री क्या है हार्ट अटैक की। लोग कहते हैं भाई हम तो कुछ नहीं करते लेकिन अटैक हो गया, तो बड़ा रिस्क फैक्टर एक फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद आपका आता है लाइफ स्टाइल, बैड हैबिट्स, सिगरेट का पीना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाना, नहीं टहलना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये रिस्क फैक्टर हो गया। आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो नॉर्मली स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक्सेसिव फैटी फूड, लैक ऑफ वॉकिंग और जेनेटिक फैक्टर, ये सब जो फैक्टर है अटैक को बढ़ाता है।
1: अल्कोहल,
0: शराब जो है आपके सब ऑर्गन को ख़राब करता है, इसलिए बिल्कुल दूर ही रहें इससे, शराब से बिल्कुल दूर रहें।
1: खतरे में कौन है? डायबिटिक लोग या जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, क्या वो हार्ट अटैक के लिए?
0: जी बिल्कुल, डायबिटिक में क्या होता है कि आपका एक पहले से टेंडेंसी है, आर्टरी नैरो होता है। जो नॉर्मल डायबिटिक आदमी, नॉर्मल पर्सन में और डायबिटिक पर्सन में लोग एंजियोग्राफी करते हैं, डायबिटिक्स का आर्टरी पहले से ही पतला होता है, डिफ्यूजली डिजीज होता है वो, तो हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है डायबिटिक में, पहली बात। दूसरी बात है कि डायबिटीज वाले को ब्लॉकेज जो होता है एक आर्टरी में नहीं, वो मल्टीपल आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, एक साथ सब आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है। तीसरी बात, डायबिटीज वाले को ज़्यादातर आपको बाईपास की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज रहता है। तो नंबर वन, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, खासकर जो यंग स्मोकर्स जो होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं 40 साल से पहले, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसमें अटैक के बाद कॉम्प्लिकेशन चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोलेटरस नहीं बना होता है। कोलेटरस एक होता है जो कि एक बन जाता है कभी कभी ओल्ड एज में, लेकिन यंग में होता नहीं कोलेटरस, इसलिए चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है आपके यंग पर्सन में।
1: जांच क्या करवाते हैं इसके लिए?
0: जी, शुरुआती जांच में जैसे एक ECG हो गया, ECG में हम लोग नॉर्मल आपका ECG करते हैं, फिर आपका एक ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, इसमें हम लोग ECG लगाते हैं और आपको एक मशीन होता है ट्रेडमिल करके, उसमें चला के देखते हैं कि भाई चलने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद एक इकोकार्डियोग्राफी जाँच होता है, फिर हम लोग जो कन्फर्म करते हैं वो एंजियोग्राफी से करते हैं। एंजियोग्राफी नॉर्मली एक सुई के द्वारा होता है, बहुत छोटी सी जाँच है, सुई के साइज का एक नीडल होता है जिसको हम लोग हाथ की नस या पैर की नस में घुसा के हार्ट तक पतली सी कैथेटर ले जाते हैं, जहाँ से हम लोग कॉन्ट्रास्ट और डाई डाल के देख लेते हैं कि कितना कितना ब्लॉकेज है सब में।
1: और उसके बाद अगर कंफर्म हो गया कि ब्लॉकेज है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या है?
0: ट्रीटमेंट जो अटैक का है, दो तीन तरह का ट्रीटमेंट है। जो शुरुआती ट्रीटमेंट था वो हम लोग रेस्ट था खाली, उसके बाद इवॉल्व थोड़ा सा और आगे आया तो हम लोग का मेडिकल थ्रोम्बोलिसिस आने लगा, जिसमें कि दवाई के द्वारा घुलने लगा आर्टरी, लेकिन उससे चांसेस था ब्रेन हेमरेज होने का ज़्यादा। अब जो सबसे अच्छा इलाज है वो है हम लोग का एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जैसे ब्लॉकेज हुआ उसमें क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू ही एक पतली तार घुसा देते हैं आर्टरी में, बैलून से उसको खोल देते हैं और वहाँ पे एक स्टेंट लगा देते हैं।
1: जी, जिन्हें एक

0: जो है हम लोग का एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जैसे ब्लॉकेज हुआ उसमें क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू ही एक पतली तार घुसा देते हैं आर्टरी में, बैलून से उसको खोल देते हैं और वहाँ पे एक स्टेंट लगा देते हैं।
1: जी, जिन्हें एक बार अटैक आ गया है उनके लिए क्या दूसरी बार या तीसरी बार अटैक होने का खतरा ज्यादा होता है?
0: बिल्कुल ज्यादा होता है। जो नॉर्मल आदमी है जिसको अटैक आ चुका है वो भी एक रिस्क फैक्टर ही है, जैसे आपका हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर है, ऐसे एक प्रीवियस अटैक भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है।
1: लाइफ स्टाइल के बारे में, खान पान, रहन सहन,
0: जी जी
1: ये सारी चीजें,
0: बिल्कुल आपका समय से सोना सबसे इम्पोर्टेंट है, समय से जागना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जागने के बाद जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, जैसे कि वॉक करना है, योगा करना, प्राणायाम करना, वो करना जरूरी है। आप डाइट ले, आप संतुलित आहार ले, अपना फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ये सेवन बढ़ाएं, फैटी चीज, ऑयली चीज, तला भुना चीज कम ले, मीठी चीज का भी से, जैसे पहले नमक कम था, आप शुगर कम भी हम लोग कहते हैं, मीठी चीज कम से कम ले, डायबिटिक नहीं है तो भी कम ले आप।
1: चलते चलते क्या सलाह देंगे?
0: बिल्कुल हार्ट से अटैक से घबराए नहीं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है लेकिन सबसे खतरनाक ये चीज है, बिल्कुल लक्षण को नजरअंदाज न करें।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे भक्ति और आध्यात्म के मार्ग की संगीतमय यात्रा वंदना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। प्रमुख स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

पाकभुशुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, जैसे गुरु अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति से कामनाओं से मुक्ति मिलती है। जब तक कामनाएं जगती रहती हैं, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।

अभी आप रामचरितमानस गान का आनंद ले रहे थे। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समय होगा प्रातः के 7:05 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 8:00 से। आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे हमारे पटना केंद्र से। समय होगा प्रातः के 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण करेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रातः के 9:10 पर। प्रातः 10:00 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का और 10:30 पर विद्यापति गीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनेंगे कबीर भजन। कलाकार होंगे पंडित जसराज। समय होगा प्रातः के 11:00। NCERT या प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 11:30 पर। दोपहर के 12:00 आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। महिला श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार सुनवाएंगे दोपहर 12:30 पर। देशभक्ति गीत के अंतर्गत आज सुनेंगे हम हिंदुस्तानी फिल्म में मुकेश की आवाज में गीत। समय होगा दोपहर के 1:10 पर। 1:15 पर दोपहर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर के 2:00 हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इलाकाई खबरें दोपहर के 2:05 पर और रोजगार सूचना दोपहर 2:10 पर प्रसारित करेंगे। दोपहर के 2:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। लोकगीतों का आप आनंद ले पाइएगा दोपहर के 3:00। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम। चर्चा का विषय होगा नशा मुक्ति और युवा। समय होगा संध्या 5:00। संध्या 5:40 पर आप सुन पाएंगे नए फिल्मों के गाने फिल्म संगीत के अंतर्गत। संध्या के 6:10 पर सुनिएगा विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे संध्या 6:25 पर। गांव घर के अंतर्गत आज सुनिएगा अनुभव के चश्माशाह। चर्चा का विषय होगा विश्व फुटबॉल दिवस और गंगा दशहरा। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। समय होगा संध्या 6:30 पर। खेती गृहस्थी सुनिएगा संध्या 7:00। फिल्म संगीतकार ले पाएगा आप संध्या 7:52 पर। सिंगरहार यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। समाचार संध्या का समय होगा रात्रि 8:45 पर। रात्रि के 9:00 सुनिएगा न्यूज एट 9:00। उर्दू खबरों का प्रसारण करेंगे रात्रि 9:15 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा पब्लिक स्पीक। समय होगा रात्रि के 9:30 पर। रात्रि 10:00 आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। रात्रि के 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका

के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला में आज के संक में मैं हूं कुशल और मेरे साथ है रंजीत। रंजीत जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार और नमस्कार मिथिला सुनने वाला सब श्रोता के नमस्कार। और जना के श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम लोग करै छी सुविचार सँ। आज सुविचार,
0: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी न डरे जैसा उन्होंने आपके साथ किया, यह है चाणक्य नीति।
1: देखिए कुशल, सुंदर बात किताबे तक सीमित रहै छै। प्रत्येक व्यक्ति के अपन अपन अवधारणा होइ छन और प्रत्येक व्यक्ति अपने सोच से अपना के महान बनाबै छथिन, दोसर के सोच के में कतौ ओ सम्मिलित नहि करै छथिन। और आगा बढ़ै छी और जानकारी साझा करै छी आजुक दिनक इतिहास पर।
0: आज के दिन सन 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत की और 1970 के दशक में अंत तक इंसानों को चांद पर भेजने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा। सन 1963 में आज ही के दिन अमेरिका के 32 देशों ने एकजुट होकर अफ्रीकी संघ का गठन किया था। सन 1995 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार किसी जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली थी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त का निधन आज ही के दिन सन 2005 में हुआ था।
1: चल आज दिन के इतिहास हमारे श्रोता लोकन से जानकारी साझा कल। और श्रोता लोकन बताबे चली कि आयल 25 मई हमारे विश्व फुटबॉल दिवस यानी कि वर्ल्ड फुटबॉल डे आज के दिन से हमारे मनाबे छी। तो कार्यक्रम के आगा जे परिवेश आयत आगा हमरा लोकन एहि विषय पर चर्चा करब जे भारत में और विश्व में फुटबॉल खेल के की महत्व रह गेल छै, फुटबॉल खेल हमरा जीवन में क्या आवश्यक छै और खेल सँ रोजगार के की संबंध छै। एहि सब विषय पर खेल सँ रोजगारिकता के संबंध नहि छियै, खेल सँ शिक्षा के संबंध सेहो छै। तो खेल सँ शिक्षा के संबंध की छै एहि सब विषय पर हमरा लोकन चर्चा आगा करब। मुदा ताहि सँ पहिले आजुक नमस्कार मिथिलांक में हमरा लोकन सुनै छी सुंदर सन मैथिली गीत विद्या, और मैथिली गीत के अंतर्गत आइ हमरा लोकन सुनि रहल छी विद्यापति गीत।

धन्यवाद कुशल, नमस्कार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है कि राज्य सरकार उद्यमी के सुरक्षा और भरोसा देत, ऐ दुनू एहन चीजें जकरा माध्यम से बिहार के सबसे पैघ संख्या में उद्योग स्थापित कैल जाए। सरकार अइ पर पैरामीटर पर काज कर रहल है। मुख्यमंत्री कहलन एलान कलन है कि प्रत्येक 3 महीना पर व्यवस्थित और उद्यमी के संगे बैसार कैल जाए और सुरक्षा और कोनो समान हुए एकर तत्काल निंदा कैल जाए। बिहार में इंडस्ट्री आयत और बिहार के तस्वीर इंडस्ट्री एला के बाद बदल जाए। देश में खान पीन के चीज के गुणवत्ता जांच और निगरानी व्यवस्था में बड़का बदलाव होबय जा रहल है। केंद्र सरकार एहन व्यवस्था लाबो के तैयारी कर रहल है जकरा खाद्य पदार्थ के निगरानी के काज केंद्र स्तर पर सेहो कैल जाए और राज्य के भूमिका सीमित भ जाए। एकरा लेल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नवका प्रणाली तैयार कर रहल है। मामला से जुड़ल 2 वरिष्ठ अधिकारी ई जानकारी देलन है। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE के पाठ्यक्रम कक्षा 100 लकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा के मातृभाषा दिवस के रूप में प्रदान कैल गेल। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर रवि को ई जानकारी देलन। उ बतौलन कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी हुनका पत्र भेज कर ऐसे अवगत करौलन है। सांसद बतौलन कि CBSE के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कोर्स में मैथिली के सम्मिलित कर लेल गेल। नवका पाठ्यक्रम में CBSE के वेबसाइट पर सेहो उपलब्ध करा देल गेल। पत्र के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCP 2020 के अनुशंसा के आलोक में कक्षा 100 माध्यमिक कक्षा मातृभाषा मैथिली के शिक्षा के माध्यम बनाओल जायत। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के ओर से दरभंगा प्रमंडल के लेल 22 नवका बस के स्वीकृति दे दल गेल। इस 100 बस पटना डिपो में आबिक ठाढ़ है। एकर परिचालन विभिन्न रूट पर आगामी जून महीना से शुरू कैल जायत। पथ परिवहन विभाग दरभंगा प्रमंडल के रीजनल मैनेजर अजिताभ आनंद बतौलन कि कुल 22 नवका 35 सीटेड बस के स्वीकृति दरभंगा प्रमंडल के लिए प्रदान कैल गेल। ओ बस पटना स्थित डिपो में आबि चुकल है। एकर परिचालन के लिए संबंधित स्वीकृति आदेश प्राप्त भ गेल। बरसात के पूर्व अइ बस के परिचालन विभिन्न महानगर के लिए लंबा रूट पर शुरू क देल जायत। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 120वें सप्ताह दिवस पर बिहार प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन में रक्तदान शिविर के लिए चिकित्सा शिविर लगाओल गेल। अइ में 25 रक्तवीर रक्तदान कैलन। कार्यक्रम में आयुर्वेद महाविद्यालय बेगूसराय के वरिष्ठ वैद्य उमाशंकर चतुर्वेदी, राजकीय आयुर्वेद अस्पताल पटना के अधीक्षक वैद्य देव दत्त नारायण सिंह आदि विशिष्ट चिकित्सक शैक्षणिक सेवा के लिए सम्मानित सेहो कैल गेल। बिहार में पिछला 2 सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और हीट वेव लू के प्रकोप के देखते स्वास्थ्य विभाग सब जिला के रैपिड रिस्पांस टीम के गठन कैलन है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिला के सिविल सर्जन के टीम गठित कैल गेल। लू से पीड़ित मरीज के टीम तत्काल सरकारी अस्पताल पहुँचात और इलाज के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराओ। कोनो हीट वेव से पीड़ित मरीज हेल्पलाइन नंबर 104 पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मदद लौ सकै छथि। विभाग के सब जिला के सरकारी अस्पताल के बाह्य रोगी कक्ष OPD में आवे वाला सब मरीज के हॉट स्ट्रिक में आवे वाला के जाँच के निर्देश सेहो देल गेल। बिहार के साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर 1930 जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आधारित है। अइ क्या लेल कॉल सेंटर और साइबर अपराध से ठगी के जुड़ल शिकायत वर्तमान में कम कैल जा सकैत अछि। ओतहि नवका व्यवस्था में कार्रवाई में लागो वाला समय घटत और पीड़ित के गोल्डन ऑफर के फायदा भेटतन। अधिकारी के मुताबिक बिहार में समतल देश के पहले AI आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर के अगला 3 से 4 महीना में तैयार करबाक प्रस्ताव कैल गेल। राज्य के 3500 पंचायत में खेल के मैदान बनाओल जायत। मनरेगा से बनो वाला अ मैदान के निर्माण के लक ग्रामीण विकास विभाग तैयारी पूरा कर दिलक है। राज्य सरकार के सोचे कि पंचायत स्तर पर खेल के मैदान बनवा से बिहार में खेल कूद के बढ़ावा भेटत। गांव मोहल्ला हो तो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बन सकते। राज्य के 100 प्रखंड में अर्चन कार्यालय के साफ सफाई मद में 11.28 करोड़ रुपया खर्च है। जीविका समूह के माध्यम से कार्यालय परिसर में साफ सफाई है। ग्रामीण विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राशि आवंटित करते सब उप विकास आयुक्त के ई जानकारी देलन है। दरअसल पिछला साल विभाग के जीविका के माध्यम से प्रखंड से अंचल कार्यालय के साफ सफाई करवा के निर्णय सेहो लेल गेल। ई हाल चाल अखन अपने लोकनि आकाशवाणी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं रंजीत कुमार झा।

0: दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: बिनीपुर नल जल योजना प्रखंड में तरौनी पंचायत के हवा निकल गया। 17 में से मात्र 2 गो चालू है, शेष भूमिगत पाइपलाइन वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ल है। पानी के लिए लोग भटक रहल छै, तो लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग चैन के वंशी बजा रहल है। सूत्र के मुताबिक तरौनी, विश्वनाथपुर, मुर्तजापुर, इठहरवा, बलुआही और बड़का छोटकी तरौनी में 17 गो नल जल योजना में गड़बड़ी पड़ गया है। वर्षों पूर्व गारी नल जल योजना के अधिकतर बीमार छल। वार्ड 15 विश्वनाथपुर चौपाल टोला, वार्ड 10 बाबा पोखर, वार्ड 3 मृत्युंजा के नल जल योजना वाटर टावर नहीं रहवा के कारण जलापूर्ति व्यवस्था कतेक दिन से ठप पड़ल है। लहरियासराय में आगामी 2 जून के प्रथम मंगलवार को हो वाला सहयोग शिविर के सफलता के लिए सदर प्रखंड के शहबाजपुर और सीसो पश्चिम पंचायत के में जिला अधिकारी कौशल कुमार रवि को औचक निरीक्षण कैलन और शिविर के सफलता के लिए उपस्थित पदाधिकारी के महत्वपूर्ण निर्देश दिलन। निरीक्षण के दौरान वीडियो के निर्देश देत कहलन कि शिविर प्रारंभ होब से पहले आम जन के शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त करवा के लिए कर्मी के प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कैल जाए। प्राप्त सब आवेदन के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कऽ माध्यम के निष्पादन और पदार्थिता के संग तुरंत कार्रवाई के सुनिश्चित कैल जाए। म्यूजियम गुमटी के पर निर्माणाधीन लाइट आरओबी दरभंगा शहर के लिए वरदान साबित भ सकैत अछि। 9 करोड़ रुपया के लागत से अई परियोजना में रेलवे के अधिकारी तथा अभियंता हर हाल में तेजी आनि कऽ मिशन मोड में पूरा करैत। तकनीकी कारण से विलंब भेल शुरू में अई परियोजना में अखन तक कोनो प्रकार के शिथिलता और उदासीनता बर्दाश्त नहीं कयल जाय। ई निर्देश स्थानीय सांसद सह लोकसभा के भाजपा सचेतक तथा रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर देलन है। लहरियासराय में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के निर्देश पर रवि का कोतवाली थाना अध्यक्ष और भालपट्टी थाना अध्यक्ष अपन अपन थाना परिसर में शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण के संगे शांति समिति के बैसार कैलन। अहि में आगामी बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाबों में सम्पन्न कराब के अपील कैल गेल। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के ओर से आयोजित DCECEPM 2026 परीक्षा रवि को जिला के मुख्यालय के 21 गो केंद्र पर आयोजित कैल गेल। ई परीक्षा 2 गो पाली में संचालन कैल गेल। जल संरक्षण के दिशा में सक्रिय संगठन तालाब बचाओ अभियान के बैसार रवि को मैथिली साहित्य परिषद के परिसर में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आरवी खेतान के अध्यक्षता में कराओल गेल। बैसार में कहल गेल है कि सदर प्रखंड मत्स्यजीवी सहकारिता सीमित लिमिटेड सौ संगठन के जानकारी दिल गेल है कि सहकारी समिति वर्ष 2022-23, 2026-27 में कुल 287 गो सरकारी तालाब के बंदोबस्ती भेल, जाहि में 13 गो तालाब के अस्तित्व आब जमीन पर नहीं है, मात्र नक्शा पर रह गेल है और वो नक्शा सौ तालाब अछि और जमीन सौ तालाब गायब भ गेल है। एकरा अलावा 15 गो एहन तालाब है जकरा कि दबंग के द्वारा भर क उराही कऽ कऽ ओकरा बंदोबस्ती कऽ देल गेलै। गौराबोराम कोसी नदी में बाढ़ के विभीषिका के बचाव के लेल 70 साल पूर्व में बनल कोसी पश्चिमी तटबंध के ऊंचीकरण के पक्कीकरण के योजना एक बेर फिर अधर में लटक गेलै। एकर कारण वित्तीय स्वीकृति के नई भेटनाई बताओल जा रहल अछि। 29 सितंबर 2024 को पश्चिमी कोसी तटबंध के ऊपर नदी के पानी गुजरबा से तटबंध के टॉप के द्वार दशा जीर्ण शीर्ण भ गेल छल और एकर अखन धरि मरम्मत नहीं कराओल गेलै। मिथिला स्टूडेंट यूनियन रक्त के कमी से जूझ रहल जरूरतमंद के मदद के लेल एक बेर पहल कलक है। एकरा लकर रवि को पघारी गांव में शुभम झा के अध्यक्षता में बैसार आयोजित क रक्तदान शिविर लगाओल गेल, जाहि शिविर में 31 गो व्यक्ति विशेष मरीज के लेल अपन रक्त के दान कलन। जिला में सरकारी स्कूल के पिछला सत्र के तुलना में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में क्लास 1 से 9 तक के बच्चा के नामांकन भेल। एकरा लेल शिक्षा विभाग गंभीरता से लैत नामांकन में कमी पूरा कराबो के जिम्मेदारी समस्तीपुर के DEO के देलन है। संगे ओ कहलन है कि अपना स्तर पर स्कूल में बच्चा के नामांकन के समीक्षा कऽ कऽ जे बच्चा नामांकन से वंचित रह गेल छथि हुनका विद्यालय में नामांकन करायल जाय। मधुबनी जिला के 21 गो प्रखंड में चयनित मॉडल स्कूल में कक्षा 9 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरा भ गेल है।

0: लेकिन शिक्षक के अंतिम पदस्थापना नहीं होबा के कारणे पढ़ाई व्यवस्था अखन तक पूरा तरीका से पटरी पर नहीं लौटल है। शिक्षा विभाग के मॉडल स्कूल के शैक्षणिक गतिविधि शुरू करबा के लिए 20 तारीख तक के समय सीमा निर्धारित कैल गेल छल, मगर शिक्षक चयन प्रक्रिया लंबित रहबा से कोनो विद्यालय में नियमित रूप से पठन पाठन अखन धरि शुरू नहीं भ सकल है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मॉडल स्कूल में विशेष व्यवस्था के तहत नामांकन कैल गेल है। समस्तीपुर रेल मंडल के ओर से डिप्लोमा परीक्षार्थी के लिए अप्रत्याशित भीड़ के देखते रवि के दरभंगा पाटलिपुत्रा परीक्षा स्पेशल ट्रेन के परिचालन कैल गेल। ई स्पेशल ट्रेन दरभंगा समस्तीपुर के रास्ता पटना तक चलाओल गेल ताकि उक्त ट्रेन में परीक्षार्थी और अभिभावक आसानी से अपन गंतव्य तक सफर करें। ओते प्लेटफॉर्म पर परीक्षार्थी के भीड़ के नियंत्रित करबा के उद्देश्य से जनसंघ पर हेल्प डेस्क सेहो खोलल गेल छल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई PRPS कॉलेज वैगनी में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ अर्थर्स एंड रिसर्चर्स के जनकपुर नेपाल और दरभंगा चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में रवि को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभ आरंभ कैल गेल। सम्मेलन में केंद्रीय विषय छल भारतीय ज्ञान परम्परा के विकास में मिथिला क्षेत्र के योगदान साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में। अहि के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: तो रंजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 22 से 26 मई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अनेक जिलों में गरज वाले बादल बनने की संभावना है। इसके चलते कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, वर्षा के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 29 से 30% रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 14 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।
0: और जो हमारे अपने बात करी यातायात संबंधी जानकारी के, तो बताबे चले जो यातायात संबंधी के जानकारी के जहाँ तक हमारे लोगों के सूचना प्राप्त है, यातायात जिला यातायात प्रभारी के द्वारा सड़क मार्ग में कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गया है। जो वन वे रूट लागू है वन वे रूट आइयो लागू रहत, मुदा कोनो VVIP मूवमेंट के कारण अगर सड़क में परिवर्तन कैल जाइए तो ओकर सूचना अपने लोगन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा जरूर देल जाएत। जो बात हम अपन करी रेलवे रूट के, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जाहि गाड़ी के जे आगमन और जाहि गाड़ी के जे प्रस्थान करबाक समय निर्धारित है अपना समय पर निर्धारित रहत। हवाई अड्डा अथॉरिटी के जो हम बात करी, तो हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से प्राप्त जानकारी ओहिमे कोनो विमान परिचालन के समय में हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से कोनो परिवर्तन नहीं कैल गेल है, और जो कोनो परिवर्तन है तो कर जानकारी अपने लोगन के आकाशवाणी परिवार के द्वारा देल जाए। तो इछल यातायात संबंधी जानकारी। और नमस्कार मिथिला कांक में हम लोगन आगा बढ़ित छी, और सबसे पहले हम फिल्म संगीत के आनंद ले छी, श्रोता लोगन के इंतजार रहे छन। ओकरा बाद जना हम कहने छन कुशल कि आई हम लोगन के लेल विश्व फुटबॉल दिवस थिक। खेल जीवन में कतेक आवश्यक थिक, ओ स्वास्थ्य के लिए लोग देखे छथिन जे खेल खेला से स्वास्थ्य टा पर ओकर असर पड़े छे और स्वास्थ्य जे छे से बड़ा मजबूत रहे छे, स्वास्थ्य में के ठीक रखे में खेल सहायक होइ छे। लेकिन हम बताबे चलिए जे खेल एकटा एहन विधा छे जे अहाँ के स्वास्थ्य के ठीक टा नहीं रखे है, अहाँ के आर्थिक शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से के विकार के दूर करवा के शक्ति खेल में छे। हालांकि खेल के प्रति से कुशल अब बहुत बदल गेले है, खेल अब खेल नहीं रह गेले है, खेल में आप से हो एक टा खेल होबे लगले है। खेल के जे परिपाटी चले है ओई परिपाटी पर कतौ ने कतौ प्रश्न चिन्ह उठे छे। अब अहाँ देख लेबे प्राथमिक विद्यालय से लोको और महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक खेल के एक टा अपन अलग स्थान देल

0: प्राथमिक विद्यालय में खेल प्रशिक्षक राखल जाय छथिन जे बच्चा के खेल सिखौथिन।
1: हाँ, और रंजीत जी, जब पहले की बात करें तो पहले लोग खेल को खेल ही समझते थे, लेकिन अब खेल में लोग अपना करियर भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि खेल सिर्फ खेल है। बहुत से लोग जैसे कि शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सुबह उठ के योग नहीं करना चाहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो खेल भी खेलते हैं। सब चीज़ का एक नियमित समय होता है। ये नहीं कि अगर आप खेल खेलने बैठे तो सुबह से लेकर रात तक खेल खोल रहे हैं और खेल को खेल ना समझे। खेल में आप करियर भी ढूंढ सकते हैं, खेल में आप अपना शारीरिक व्यायाम भी ढूंढ सकते हैं, जो आप जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं।
0: देखियो, हम पहले अहाँ कहूँ जो खेल के प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालय से देल जाए।
1: हाँ,
0: और खेल के माध्यम से आइए रोजगार लोग के प्राप्त हो रहा है, ई कोनो बात नवका नहीं छे, ई पहले कानून में संशोधित छले है। और जे विद्यार्थी खेल कूद में तेज होई छला है, हुनका लेल विद्यालय के तरफ से स्टाइपेंड छात्रवृत्ति के व्यवस्था कैल जाय छे।
1: हां हां,
0: हुनका छात्रवृत्ति भेटे छलन है। और हम अहाँ के बताबी, हमरा बाजे में कोनो ई नहीं है, 90 के दशक के बाद खेल के जे ह्रास भेलै है, ओकर जिम्मेवारी कतौ ने कतौ लोग के उठाबे पड़तै। अहाँ देख लियो, हम अहाँ के बताबे छी, चूंकि ओहि दशक के हमरा लोकन छात्र और खिलाड़ी दुनू रह चुकल छी, तैं ओकर अहाँ के हम अनुभव कहै छी कि जे विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन काल में मैट्रिक पास केला के बाद अगर वो जिला स्तरीय खेल खेल लै छला है, यानी कि जिला स्तरीय टीम में हुनकर चयन भ जाय छलन है, तो बुझू जे बिहार पुलिस के नौकरी हुनकर पक्का भ जाय छलन है। कोनो खेल होय, कॉलेज में नामांकन में ओहि विद्यार्थी के छूट भेटे छलिए, यानी कि जे विद्यार्थी के फर्स्ट क्लास के मार्क्स छे, हां
1: हां,
0: हुनका नामांकन हो में कठिनाई होइ छलन कखनो कखनो कट ऑफ मार्क्स के लक, लेकिन जे विद्यार्थी खेल कोटा के तहत नामांकन के लेल अपन आवेदन आवेदित केने छला है, हुनका ट्रायल होइ छलन है। एना नहीं होइ छलै जे हम सर्टिफिकेट लगा कर आवेदन इंटर में नामांकन कराबऽ के तहत लगा दिलिए और सर्टिफिकेट देख के हमर नामांकन भ गेल। ओकरा लेल महाविद्यालय विद्यालय के तरफ से एगो चयन समिति होइ छलै है, जे ओकर प्रशिक्षण परीक्षण लै छलखिन है, ओकरा बाद ओकरा ओहिमे नामांकन होइ छलै। तऽ आब देख लियो जे खेल के महत्व हमरा समाज में पहले से कतेक छलै, जे अंक के आधार अगर कमो ओकरा छलै है तऽ खेल के आधार पर बच्चा के नामांकन भ जाइ छलै। ओतबे नहीं होइ छलै, बच्चा के रोजगार सेहो भेट जाइ छलै। अहाँ देखैत हेबै आइ काल्हि लोक नवका, आइ काल्हि बात सब कहलक, पहले हम सब धियापुता में बुझलियै खेल प्रशिक्षक, आब लोक सब कहलक पी टी आई की छै। पी टी आई के बहाली वएह जे खेलै छथिन जिला स्तरीय खेल खेललनि, महाविद्यालय स्तरीय खेल खेललनि, विश्वविद्यालय स्तरीय खेल खेललनि, विश्वविद्यालय खेल स्तरीय खेल खेलला के बाद NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एकर ओ डिग्री लऽ कऽ अबै छलाह है, और ओहिमे BPED बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल, MPED ई सब डिग्री होइ छलैए, और ओहिके आधार पर प्राथमिक विद्यालयसँ लऽ कऽ माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सबमे ओकर खेलके आधार पर बहाली होइ छलै।
1: और रंजीत जी, जब विश्व फुटबॉल दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो 25 मई 1924 को पेरिस में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार फुटबॉल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी, जिसने 1930 में पहले फीफा विश्व कप का मार्ग प्रशस्त किया था।
0: जी, और 1933 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के गठन सेहो भेल रहे, और ओहि गठन में ओहि समय में राज दरभंगा के बड्ड पैघ योगदान रहे, और ओ विश्व भारतीय फुटबॉल गठन में राज दरभंगा का बड़ पैघ योगदान रहले, बहुत आर्थिक मदद द कऽ एकरा गठन कयल गेलै। और हम बताबै चली कि फीफा वर्ल्ड कप में आइ धरि हमर भारत राष्ट्र जे से क्वालिफाइयो नहीं कयलक है, कतौ ने कतौ ई हमरा दुखद बात है। तेकर कारण ई थी कुशल कि हम दरभंगे के बात करै छी, DDFA दरभंगा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, जे कि बिहार ओलंपिक एसोसिएशन बिहार सँ संचालित होइ छै। पिछला 3 साल सँ 4 साल सँ दरभंगा फुटबॉल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी के चुनाव नहीं भऽ सकलै है। जे बिहार के प्रेसिडेंट छथिन, अध्यक्ष छथिन, जे बिहार के सचिव छथिन, बिहारों के जे सचिव छथिन, वो अनुकंपा के आधार पर छथिन, चूंकि हुनकर पिता सचिव रहथिन, हुनकर मृत्यु भऽ गेलै तो हुनका स्थान पर हुनका राखि देल गेलै। तो ई रवैया थिक फुटबॉल, अहाँ दरभंगा शहर के स्थानीय निवासी छी, अहाँ देखने हेबै जे राज दरभंगा में मैदान में कहियो रंग बिरंगी जर्सी पहिरने और 20 फुटबॉल लेने वो मैदान गुलजार रहै छलै। आइ के डेट में हाँ तो देखबै तो कतौ एकटा फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ के नजर
1: नहीं आएगा।
0: क्रिकेट के प्रति लोग के बड़ लुभावन एलन, बहुत आकर्षण भेला क्रिकेट के प्रति, लोग क्रिकेट बहुत खेलऽ लगला, मुदा फुटबॉल खेल

0: के कतौ ने कतौ ह्रास भेलै। तकर कारण हम पहिले कहलहुँ हँ जे 90 के बाद खेल आओर खिलाड़ीके कोटाके सङ्गे जे छेड़छाड़ भेलै, देख लियौ कतऽ कतऽ छलैए। लोक कहथिन जे बड्ड बजैए, खिलाड़ीके कोटा, एयर इंडिया, रेलवे, बैंक, फोर्स, एहि सबमे खिलाड़ीके कोटा भेटै छलनि हँ। कोटाके मतलब की होइ छलै, जे रिजर्व छी अहाँ, अगर अहाँ खिलाड़ी छी आओर अहाँके पास कोनो स्तरीय सर्टिफिकेट मौजूद अइ तऽ अहाँके लेल ओहि वैकेंसीमे विशेष अहाँके महत्व देल जाइ छलै। आब की भऽ रहल छै, कोनो महत्व नहि रहि गेलै, ताहिके कारण फुटबॉल खेलके कतौ ने कतौ ह्रास भेलै आओर आइ ओ अपन अंतिम साँस जे छै से गिनल छै। दरभंगे टा की हाल नहि छै, हम पूरे मिथिलेके बात करी तऽ लगभग लगभग सब फुटबॉल जे छै से जिला स्तरीय ओकर इएह हाल छै। कॉरम करबाक लेल लोक एकटा डिस्ट्रिक्ट लीग कतौ होइ छै कतौ नहि होइ छै, आओर ओकरा बाद जे छै से अहाँके राज्य स्तरीयके स्थिति जे छै से लगभग सएह छै। चर्चा हमरा लोकनि आगाँ सेहो करब, मुदा ताहिसँ पहिले हमरा लोकनि सुन्दर
1: संगीत सुनी।

0: तो रंजीत जी, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिए की जो अगर जल जाए तो न सिर्फ एक घर बल्कि पूरे समाज को अंधेरा दूर कर देता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे शिक्षा की, यानी एडुकेशन। किसी ने सच ही कहा है कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा का असली महत्व क्या है? तो यह केवल सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने का जरिया नहीं है, ये और भी कुछ बात है। आइए चलते हैं आज रंजीत जी से इसी विषय पर बात करते हैं कि शिक्षा क्या सिर्फ एक नौकरी पाने का ही जरिया है या समाज में चलने का या समाज में रहने का भी और प्रतिष्ठित दिखने का भी एक कला है।
1: देखो, शिक्षा के यहाँ ओकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पर ध्यान डालियो।
0: हाँ,
1: हमारे लोग शिक्षित हुई छी कैले, शिक्षित दीक्षित, एहिमे अंतर होइ छै। विद्यार्थी शोधार्थी, एहिमे अंतर होइ छै। विद्यार्थी शिक्षार्थी, एहिमे अंतर होइ छै। लेकिन शिक्षा के महत्व केवल विद्यालय सँ और महाविद्यालय सँ विश्वविद्यालय सँ डिग्री प्राप्त कऽ लेबाक मतलब शिक्षा के उद्देश्य पूरा नहीं होइ छै। शिक्षा के उद्देश्य तखन पूरा होइ छै जखन अहाँ के शिक्षा के संगे संगे व्यवहारिक ज्ञान के समावेश, जखन दुनू के समावेश होइ छै तखन शिक्षा के सही अर्थ निकल के सामने आबैत छै। साविद्या विमुक्तये, विद्या अहाँ के हरेक प्रकार के विकार सँ, चिंता सँ, निंदा सँ, नकारात्मकता सँ दूर करबा में सफल करैत अछि, अहाँ के अग्रसारित करैत अछि। मुदा अखने अहाँ देखने हेबै नीट के परीक्षा भेल छलैए, कोनो कारणवश ओ परीक्षा पेपर रद्द भऽ गेलै और बड़ा दुखद समाचार प्राप्त

0: भेल जे छात्र लोकनि धियापुता और बच्चा लोकनि आत्मदाह कऽ लेला। आब हमरा ई नहीं समझ में आबैये कि जे बच्चा टेंथ पास कऽ गेले, इलेवेंथ पास कऽ गेले, ट्वेल्थ पास कऽ गेले, ग्रेजुएशन पास कऽ गेले, ओ बच्चा के अपना डिप्रेशन से निकलवा के शक्ति नहीं उत्पन्न भ सकले, एहन शिक्षा कौन काज के। आईएएस भ गेलौं, आईपीएस भ गेलौं, डॉक्टर भ गेलौं, इंजीनियर भ गेलौं, लेकिन डिप्रेशन में जीव रहल छी, तनाव से मुक्त नहीं भ रहल छी, एहन शिक्षा कौन काज के। शिक्षा तो अहाँ के कारी अहाँ के डिग्रीए टा और अधिकारे टा के बात नहीं करी है, शिक्षा अहाँ के हरेक तनाव के मिटाव के बात से हो करी है। लोग तखन कहें ओ सुलझल व्यक्ति है, कोनो समस्या के समाधान वो निकाल लेते। आखिर ये बात हमारे समाज में फिर कहे किए, जखन बात सत्यता है तखन डिग्री, शिक्षा के डिग्री अहाँ के अभिभावक के अहाँ के गार्जियन के मात्र खर्चा के रसीद टा है, जे अहाँ अतेक खर्च कक अतेक डिग्री अतेक उपाधि प्राप्त केने छी। अतेक डिग्री अतेक उपाधि अहाँ के सामाजिक चित्रण जखन होइ छै अहाँ के चरित्र के, तखन असली सामने में आबै छै। अब अहाँ देखैत हेबै, नहि बाजबाक चाही हमरा तैयो कहि रहल छी, एक से एक प्रतियोगिता परीक्षा पास कक लोक
1: हाँ
0: नौकरी लै छथि, अधिकारी भ जाइ छथि, और आए दिन अहाँ अखबार में देखैत हेबै जे वह अधिकारी चंद रुपया के हेरा फेरी में नौकरी अपन गवा बैठे छथि। ये शिक्षा कौन काज के, कि यहाँ यह सीखलिए कक्षा एक से लोक ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी तक, यह शिक्षा छले, यह स्कूल के संचालन के नीति और नियम छले? नहीं, अहाँ शिक्षा छी, किताब पढ़े छी, कॉपी पर लिखे छी, शिक्षा के सही मतलब वही दिन निकल के होते जहिया अहाँ बेसी शिक्षित छी तो लोग के वेदना पढ़नाई अहाँ सीख लियो, जाहि दिन अहाँ के लोग के वेदना पढ़नाई सीख लिये ताहि दिन शिक्षा के असली महत्व तो सामने चल अत। आई काल्हि कहबा के लेल सब गोटे कहे छथिन जे हम ग्रेजुएट छी, हम पीजी केने छी, लेकिन अहाँ के जे पीजी कैले अहाँ जे ग्रेजुएट केने छी, अहाँ के व्यवहार में कतौ नजर नहीं आबि रहल अछि, अहाँ के वाणी में नजर नहीं आबि रहल अछि, अहाँ के वाणी अशुद्ध निकल रहल अछि, और अहाँ कहै छी हम शिक्षित छी। अहाँ शिक्षित छी, समाज में कै गोटे के शिक्षित केलियन, कै गोटा के शिक्षा के प्रति जागरूकता अपनौलियन, स्कूल गेने कॉलेज गेने शिक्षा नहीं बढ़ते, शिक्षा बढ़ते शिक्षा के शब्द के आत्मसात केने। और नमस्कार, घड़ी के सुई जे छै सेहो हमरा लोकन के किछ और इशारा करिए, तो इशारा और संकेत के शिक्षित लोकन के इहो काज छै, संकेत के बुझथिन और संकेत के हमरा लोकन फॉलो करी, और एकटा और सुंदर सन फिल्म संगीत सुनै छी, ओकरा बाद फिर श्रोता लोकन से विदा लेब।

0: सब भऽ गेल अछि, तऽ श्रोता लोकनिके अधर पर मुस्कान हमेशा कायम रहनि। आओर श्रोता लोकनिके इहो बतेबनि जे आइ 25 तारीख थिक आओर शास्त्रके मुताबिक आइसँ नौतप्पा यानि कि 9 दिन गर्मीके जे दिन होइ छै ओ चालू भऽ रहल अछि, तऽ घरसँ निकली तऽ गर्मीके जे बचावके जे दादी नानीके नुस्खा
1: है, छाता, पानी का बोतल, ये सब घर से लेके निकले।
2: अच्छा, हम तो कहेंगे ना, जी जी, ज्यादा अगर आप जरूरी काम नहीं है तो घर पे ही रहने की कोशिश करें, खासकर ये 9-10 दिन।
0: देखियो कुशल बाबू, अहाँ जे प्रश्न उठा दै छियै, फेर हमरा बाजक के बीमारी नहीं, हम बाजल लागब तऽ बहुत समय नहीं है, समय नहीं छै, तै अति सब चीज सँ बची, अति सर्वत्र बढ़ जेतै, अति सँ सब चीज सँ बचबाक चाही। एहि शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला के अंक सँ हमरा लोकनि लै छी विदा।
1: नमस्कार मिथिला।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
2: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व तो होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
4: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28

0: 20,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
5: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
4: बिटवीन टू नेशंस एंड रिमेन्स अ लिविंग ब्रिज।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
5: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक

0: यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉडर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी

0: तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की

0: खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड्स लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट लिटरेचर तालीम खेलकूद दवाएं सामाजिक काम साइंस और इंजीनियरिंग अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड्स अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरु जी के पास आ गए। उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए। तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशरियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबाइली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबाइली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से BJP के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 सप्ताह में तेल के मूल्यों में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। आज जिन विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे उनमें बिहार की 3 हस्तियां शामिल हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं डोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले विश्व बंधु और भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉ

0: डॉक्टर त्रिवेदी और विश्वबंधु को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के माध्यम से दूध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर करने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने कॉम्फेड के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन में महिलाओं को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मछली का उत्पादन 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेपाल और सीमावर्ती राज्यों के मछली बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 41 लाख से अधिक परिवारों का पक्का मकान बनाया जा चुका है। इस पर 5,57,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में भी अच्छी प्रगति है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग जल्द ही नई नीति लागू करने जा रहा है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन सह सम्मान समारोह के दौरान श्री तिवारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के पाठ्यक्रम में कक्षा एक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। सांसद ने बताया कि CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया है। नया पाठ्यक्रम CBSE की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पत्र के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में कक्षा एक से माध्यमिक कक्षा तक मातृभाषा मैथिली को शिक्षण का माध्यम बनाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों ने कल बोधगया का भ्रमण किया। इस दौरान युवाओं ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर समेत अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भ्रमण किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बकरीद को लेकर 28 मई को होने वाली CUET UG परीक्षा स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। मीना में रात गुजारने के बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल की बात।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटna को फॉलो कर सकते हैं।

0: पूर्वा और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण बिहार जहां एक ओर भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी ओर उत्तर बिहार में आंधी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण बिहार के 6 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में गर्म दिन और लू चलने की चेतावनी जारी की है।
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: विभाग ने उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण जिले में कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 43.9, कैमूर का 43.7, औरंगाबाद का 43.1 तथा गया और शेखपुरा का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कटिहार के प्राणपुर में सबसे अधिक 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के वर्ग संचालन पर 31 मई तक, जबकि भोजपुर जिला प्रशासन ने 27 मई तक रोक लगा दी है। प्रदेश में पिछले दो सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। लू से प्रभावित मरीजों को यह टीम तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाएगी और इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। कोई भी हीटवेव से प्रभावित मरीज हेल्पलाइन नंबर 104 पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मदद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि 5 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी। 21 जून तक चलने वाले अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान, पौधारोपण अभियान, प्रगति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य का साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर 1930 जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित होगा। इससे कॉल सेंटर पर साइबर अपराध और ठगी से जुड़ी शिकायतें वर्तमान के मुकाबले काफी कम समय में दर्ज हो सकेंगी। IG साइबर अपराध रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि नई व्यवस्था में कार्रवाई में लगने वाला समय घटेगा और पीड़ितों को गोल्डन आवर का फायदा होगा। उन्होंने बताया कि AI से सूचना की सटीकता बढ़ेगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। पटना जिले के पचमला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी के बाद कुख्यात सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम की घर वालों की ओर से तलाशी लेने के मामले में दो थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि छापेमारी के दौरान कार्यशैली सही नहीं पाए जाने के चलते पचमला और हाथीदह थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है। इधर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने खबासपुर थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर एक मामले में हिरासत में लिए युवकों को छोड़ने के लिए 50,000 रूपए घूस मांगने का आरोप है। वहीं कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 16 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के कमरिया उपशाखा नहर के पास शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें एक महिला होमगार्ड और पीटी से

0: टीपीसी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और महिला होमगार्ड की राइफल भी छीन ली। इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अररिया जिले के कुवारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 115 किलो गांजा बरामद किया है। बेगूसराय पुलिस ने एक मामले में 20 वर्षों से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के बबुरा गांव से पुलिस ने पशु तस्करों से 1 दर्जन पशुओं को मुक्त कराया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सरकार उद्यमियों को सुरक्षा और भरोसा देगी। दैनिक जागरण लिखता है, पशुपालकों को कॉम्फेड के माध्यम से दी जाएगी उन्नत नस्ल की गाय भैंस और बकरी। प्रभात खबर की सुर्खी है, पाकिस्तान में सैन्य कर्मियों की ट्रेन पर आत्मघाती हमला 24 की मौत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 48 घंटे तक जारी रहेगा भीषण गर्मी का सितम, फिर बदलेगा मौसम। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार की 3 हस्तियों को आज मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। आज अखबार की सुर्खी है, 1.5 लाख बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है

0: 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं।
5: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर।
5: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से।

0: हम फिर हाजिर हैं अंजुमन के साथ। दोस्तों, रास बिहारी बोस ही आज़ाद हिंद फौज के बानी थे। उन्होंने जापान में मुकीम हिंदुस्तानी कैदियों और तारकीन वतन को मुनज़्ज़म करके आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद रखी। इनकी इब्तदाई तालीम चंद्रनगर से मुकम्मल हुई और शिमला और देहरादून में उन्होंने अपनी सरकारी मुलाजमत भी की है। आपको बताएं सामीन कि दिल्ली में ब्रिटिश वायरस लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर हुए बम हमले के पीछे रास बिहारी बोस ही मास्टर माइंड थे। सामीन, हमारी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त का इशारा है कि आज की खास पेशकश महफिल सुखन की जानिब कदम बढ़ाया जाए। तो आइए समाअत करते हैं मोहम्मद कसीम अहमद की निजामत में सजने वाली आज की महफिल सुखन।
1: सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। हजरात, महफिल सुखन यानी स्टूडियो मुशायरे में आप सबों का इस्तकबाल है। आज के इस स्टूडियो मुशायरे में हमारे दरमियान मोहतरमा अंजुम आरा औरंगाबाद से तशरीफ़ फरमा है, जनाब मीम सरवर पंडौलवी मधुबनी से, और ये खाकसार मोहम्मद कसीम अहमद रहबर ग्यावी अलमारूफ चोंच ग्यावी। आइए, मैं बिला किसी तमहीद के आज के इस स्टूडियो मुशायरे का आगाज़ अंजुम आरा के कलाम से करना चाहता हूँ। मैं उन्हें इन दो मिसरों से दावत कलाम दे रहा हूँ कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मोहतरमा अंजुम आरा, आप सबों की समात के हवाले अपने कलाम के साथ।
2: इरशाद,
3: गजल से कबल मैं अपने शेरी सफर का आगाज चार मिसरों के साथ करती हूँ, मुलाहजा करें।
1: इरशाद।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बराबर इनके रुतबे के कोई रुतबा नहीं होता।

0: कर कोई रिश्ता नहीं होता, मगर माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता।
1: बेशक बेशक।
0: अब मुकम्मल गजल समाप्त करें।
1: इरशाद।

0: वाह वाह वाह वो मौसम प्यार के अब तक सुहाने हम नहीं भूले,
1: प्यार के अब तक सुहाने हम नहीं भूले।
0: वाह।
1: और ये भी शेर देखिए,
0: इरशाद हो इरशाद।
1: जहाँ

0: पुराने हैं।
1: वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब।
2: अच्छा,
0: तेरे भेजे हुए सब खत
2: पुराने
1: हम नहीं भूले। वाह वाह वाह वाह,
0: भूले
1: बहुत खूब।

0: क्या कहने हैं, वाह वाह वाह वाह, अच्छा बहुत खूब।
1: तेरी ज़ुल्फ़ों की खुशबू के खजाने हम
0: नहीं
1: नहीं
0: भूले,
1: भूले। और मक्ते का शेर संगत
0: इरशाद
1: करें।
0: इरशाद।

0: वाह। अंजुमारा साहबा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने और एक कलाम से नवाजें।
1: जी जी इरशाद
2: जी, बहुत शुक्रिया। शीश

0: गया कबूतर
1: कुदरत अच्छा जो बना देती कबूतर जैसा अपनी ही कौमी का भाई था सितमगर जैसा
2: वाह
1: जिस तरफ देखिए हर समते ही वीरानी
2: जिस तरफ देखिए हर समते ही वीरानी।

0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह,
1: घर का मंजर,
2: घर का मंजर भी है सहराओं के मंजर जैसा। और मक्ते का शेर समाज फरमाए, गम की सभी नदियाँ समा जाती हैं मुझे में अंजुम,
0: गम की सब नदियाँ समा जाती हैं मुझ में अंजुम।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। आज हम सुनवा रहे हैं आपको सुनील दत्त साहब की फिल्म के बेहतरीन नगमे। आइए सुनते हैं अगला गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में। राजेंद्र कृष्णन के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है पड़ोसन।

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत जात।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। आज सुनील दत्त साहब की पुण्यतिथि पर सुनवा रहे हैं उनकी फिल्म के गाने। आइए अगला गाना सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने। फिल्म है हमराज।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फिल्म साधना से। आवाज है मोहम्मद रफी की। मूल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है एन दत्ता ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आज हम सुनवा रहे थे आपको सुनील दत्त साहब के फिल्म के नगमे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमने उन्हें याद किया। फिल्म संगीत का आनंद आप अब ले पाएंगे दोपहर के 12 बजे।

अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत। विद्यापति गीतों का आनंद आज आप लेंगे गौतम मिश्र के स्वर में। तो आइए सुनते हैं उनसे कुछ लोकगीत।

अभी आप विद्यापति गीतों का आनंद ले रहे थे। कलाकार थे गौतम मिश्र। ये आकाशवाणी दरभंगा है। हमारी पहली सभा अभी जारी है। अगले कार्यक्रम के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं पंडित जसराज। आइए इनसे सुनते हैं कबीर भजन, राग शुद्ध वराड़ी में।

श्रोता भी अब सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में पंडित जसराज से कबीर भजन राग शुद्ध वराड़ी में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध।

0: हो रही है, साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी आगे लिखते हैं।
0: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर

शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है।

0: जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
1: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
0: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो अब अभ्यास शुरू करते हैं।
2: जी सर।
0: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
2: जी जनाब।
0: हाथ गोला हाथ में लो।
2: ले लिया जनाब।
0: अब पिन रिलीज करो।
3: फेंको।
2: फेंका जनाब।
4: अरे अरे ये क्या हुआ?
5: ये क्या हुआ?
6: अरे बच्चों बच्चों बच्चों
7: फट जाओ,
6: सब पीछे हटो, पीछे हटो,
7: जमीन पे लेट जाओ,
8: तुम्हारा निकल रहा है, तुम्हारा निकल रहा है।
9: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
10: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
10: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
11: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
12: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
13: सही में
12: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
9: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
14: May I come in, sir?
11: Yes, come in.
14: Sir.
11: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
14: सर।
11: Well done, Adi. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
14: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
11: हाँ हाँ, कहो।
14: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
11: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
14: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
11: गो अहेड यंग मैन।
14: सर।
9: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
10: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
9: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
10: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौबिंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
15: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर,
0: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
15: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुक

0: के उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
1: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
5: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक बार हुए किंतु वो डटे रहे

0: केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: श्रोताओं अब आप आनंद लेंगे हमारे किन से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म महादेव का गोरखपुर से। गायक कलाकार हैं अगम अग्रवाल, संगीत निर्देशन अगम अग्रवाल के हैं और चेतन प्रजापति के। गीत लिखा है ऐश्वर्य और शिवाला ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लापता लेडी का यह गीत। गीतकार थे प्रशांत पांडे और संगीत दिया था राम संपत ने। श्रोताओं अगला गीत सुनते हैं इसी फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत लिखा है श्वानंद किरकिरे ने और इस गीत को अपने धुनों से संवारा है राम संपत ने।

मनोज मुंतशिर और फैयाज हसमी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म डेढ़ बीघा जमीन से। आवाज थी स्टेबिन बैन की और संगीत दिया था रोचक कोहली और सोहेल राणा ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में, गीत लिखा है अर्को ने और इस गीत को संगीत दिया है अर्को ने। आइए सुनते हैं इसे फिल्म का एक और गीत।

चिड़िया ऑडियो से यह गीत अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार की आवाज में। गीतकार मेहरा आरोही, संगीत दिया है शैलेंद्र बावरे ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अर्को और हरिहरन की आवाज में, फिल्म इमरजेंसी से। गीतकार मनोज मुंतशिर, संगीतकार अर्को।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म इमरजेंसी का यह गीत अर्को और हरिहरन की आवाज में। इसी के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

0: नमस्कार बहनों,
1: नारी संसार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सहेली विजेता। बहनों, हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम में ढेर सारी बातें होंगी। हम वार्ता भी सुनवाएंगे, हर दिन कुछ खास में जानेंगे स्वास्थ्य टिप्स, और आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए आपको सुनवाएंगे कुछ नए पुराने फिल्मी गीत। तो आइए आज कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फुटबॉल दिवस पर कुछ बातें करके। बहनों, विश्व फुटबॉल दिवस हर साल आज के दिन यानी 25 मई को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2024 में 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में नामित किया, ताकि 1924 के पेरिस ओलंपिक में आयोजित पहले वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा सके। इस तिथि को तय करने वाले प्रस्ताव में खेल को विकास के एक साधन के रूप में और विशेष रूप से फुटबॉल को वैश्विक सहयोग, एकजुटता और एकता के एक माध्यम के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके। बहनों, फुटबॉल खेल ने वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में खेलों का अहम योगदान रहा है। फुटबॉल खेल एक ऐसा खेल है जो वैश्विक खेल होने के नाते एक अद्वितीय

स्थान रखता है। मनोरंजन से परे ये एक ऐसा खेल है जिसे सभी खेलते हैं। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। ये राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। फुटबॉल की व्यापक लोकप्रियता और सुलभता इसे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन मानती है। साथ ही ये मैदान पर और मैदान के बाहर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा फुटबॉल सामाजिक समावेश के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, एकता को बढ़ावा देता है और विभिन्न समुदायों के बीच की बाधाओं को दूर करता है। ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ हर तरह के लोग आपसी समझ, सहिष्णुता और सम्मान, एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित होते हैं। बहनों, सॉकर, जिसे दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फुटबॉल के नाम से ही जाना जाता है, ये सबसे अधिक खेले जाने वाले और सबसे अधिक देखे जाने वाले खेलों में से एक है। विशेषकर बच्चों के लिए ये खेल बहुत ही खास है। ये खेल अपनेपन की भावना पैदा करता है। ये खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करती है। इस खेल को लड़के तो खेलते ही हैं, पर लड़कियां भी इसे खेलकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहनों, हमारे देश की कुछ ऐसी ही महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल के ज़रिए देश को सम्मान प्रदान किया, जिनमें एक नाम है बाला देवी का। इन्होंने यूरोपीय लीग में गोल करके सभी बाधाओं को तोड़ते हुए ये साबित किया कि भारतीय वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाई जा सकती है। इसी तरह एक और नाम है कप्तान आशा लता देवी का, जो भारतीय राष्ट्रीय टीम की जान है। विश्व स्तर पर सम्मानित एक ऐसी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए उनका नामांकन मैदान पर उनके प्रभाव और मैदान के बाहर उनकी प्रेरणादायक कहानी को दर्शाता है। इसी तरह भारतीय फुटबॉल की दुर्गा और भारत की स्टार गोलकीपर अदिति चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और देश को फुटबॉल खेल के द्वारा सम्मानित किया। तो बहनों, फुटबॉल खेल की विशेषता को हम समझें और अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में उनकी रुचि को जगाएं और देश के लिए इस खेल द्वारा काम आने को प्रेरित करें। उनके हौसले, जोश और जज्बे को एक नई दिशा निर्देश दें ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके। तो आइए बहनों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

बहनों आइए सुनते हैं वार्ता शाकाहारी भोजन का महत्व। नमस्कार, मैं विजेता आज आपसे बात करने जा रही हूँ शाकाहारी भोजन के महत्व के संबंध में। श्रोताओं, शाकाहारी भोजन का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। शाकाहारी भोजन करने से मन शांत, तनावपूर्ण और खुश रहता है। श्रोताओं, दूध से बनी चीजें, फल, सब्जी, अनाज, बादाम, बीज सहित वनस्पति आधारित भोजन को हम शाकाहार कहते हैं। जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं वो मांस, मछली, अंडे जैसी चीजें नहीं खाते। श्रोताओं, शाकाहार में वो सभी चीजें शामिल है जो वनस्पति पर आधारित है। शाकाहारी आहार के बहुत सारे लाभ होते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप कम होता है, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम होता है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। शाकाहारी आहार वजन घटाने में भी सहायता करती है और पौधे आधारित भोजन अक्सर कैलोरी और संतृप्त वसा में स्वाभाविक रूप से कम होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं श्रोताओं, शाकाहारी भोजन करने से कैंसर जैसे जोखिम भरी बीमारी से भी बचा जा सकता है।

जी हाँ, फलों और सब्जियों से भरपूर आहार कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। शाकाहारी लोग तरह तरह के पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी करते हैं। शाकाहारी भोजन में आमतौर पर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज को दूर करता है। श्रोताओं, शाकाहार को पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव के लिए जाना जाता है। पशु, कृषि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वनों की कटाई में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके अलावा श्रोताओं, वैसे तो जीवन और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता, ये कभी भी और कहीं भी आ सकती है, पर शाकाहारी भोजन करने से व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी तामसिक भोजन नहीं किया, इसी का परिणाम है कि वो बड़े बड़े ज्ञानी हुए। उनका मन और चित्त शांत रहता था, ईश्वर की भक्ति कर पाते थे, अपने ज्ञान से इस दुनिया में रोशनी फैलाते थे, और ये सब कुछ तभी संभव हो पाता था जब वो मांसाहारी भोजन नहीं करते थे। शाकाहारी भोजन मन को अधिक चंचल नहीं होने देती, यानी कि आपके अंदर के चंचलता को शांत बनाए रखती है। श्रोताओं, शाकाहारी भोजन में खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचाती है। अब जैसे कि हरी सब्जियां, साग, सलाद, दाल, दूध से बनी चीजें सभी हमारे लिए फायदा पहुंचाती है। अंकुरित अनाज में मूंग और चना का सेवन करने से बाल अच्छे होते हैं। अखरोट, बादाम खाने से दिमाग तेज रहता है। नींबू का सेवन पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है, साथ ही यह हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। तो इतनी सारी खूबियां हैं शाकाहारी भोजन की। तो श्रोताओं, अपनी बातों के अंत में यही कहना चाहूंगी कि शाकाहारी भोजन के महत्व को समझें और उसे अपनाएं। धन्यवाद। बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था शाकाहारी भोजन का महत्व। आइए अब हम बात करें गंगा दशहरा की। बहनों, गंगा दशहरा, जिसे गंगावतरण के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के अवतार का उत्सव मनाने वाला त्यौहार, ये बहुत ही खास है। लोगों का मानना है कि पवित्र गंगा नदी की इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। बहनों, इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और ये दिन भागीरथी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के कारण माँ गंगा धरती पर आई और अकाल से, सूखा से इस धरती पर रह रहे धरतीवासियों की रक्षा की। इस दिन लोग गंगा नदी में किए गए स्नान को खास मानते हैं। इस दिन माता गंगा के साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान शिव के बिना माता गंगा का सीधा धरती पर आगमन होना मुश्किल था। भगवान शिव ने अपनी जटा में उन्हें स्थान दिया और तब जाकर माता गंगा अपने जल से धरतीवासियों का पोषण कर सकी। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने किए गए 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बहनों, 10 पापों हरण होने के बाद से ही इसका नाम गंगा दशहरा पड़ा। तो बहनों, इस दिन को खास बनाएं और अपने द्वारा किए गए गलती के लिए गंगा स्नान कर माफ़ी प्राप्त करें और माँ गंगा से आशीर्वाद लें कि वो हमेशा अपना आशीर्वाद इस धरती पर बनाए रखेंगी। तो आइए बहनों, अब एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं गीत।

बहनों, हर दिन कुछ खास में आइए जानें पुदीने की पत्तियों को किस तरह से उपयोग में लाएं। तो बहनों, रोजाना पुदीने की पत्ती चबाने से दांतों और मसूड़ों से खून निकलने की समस्या और पायरिया रोग से राहत मिलती है। ये एंटीसेप्टिक जैसा कार्य करता है। इसके अलावा एक गिलास पानी में पुदीने की 4 से 5 पत्तियां डालकर उबले हुए पानी से कुल्ला करने पर मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है, क्योंकि पुदीने में कीटाणु नाश करने की क्षमता होती है। बहनों, पुदीने की पत्तियों को आप शरबत बनाकर भी पी सकती हैं, उसे सलाद में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका चटनी बनाकर खा सकती हैं।

पुदीना पीसकर उसमें नींबू के रस को 2 से 3 बूंद डालकर चेहरे पर लगाने से मुहासों की समस्या भी दूर हो जाती है और त्वचा में निखार आता है। हरे पुदीने की 20 से 25 पत्तियां, 10 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम सौंफ, काली मिर्च के 2 से 3 दानों को पीसकर सूती कपड़े में रखकर निचोड़ लें। इस रस की 1 चम्मच मात्रा लेकर 1 कप गुनगुने पानी में डालकर पीने से हिचकी बंद हो जाती है। 1 टब में पानी भरकर उसमें कुछ बूंद पुदीने का तेल डालकर यदि उसमें पैर रखे जाएं तो थकान से राहत मिलती है और बीमारियों की समस्या भी दूर होती है। पुदीने का ताज़ा रस क्षय रोग, अस्थमा और विभिन्न प्रकार के सांस संबंधी रोगों में लाभकारी होता है। पानी में नींबू का रस, पुदीना, काला नमक मिलाकर पीने से मलेरिया के बुखार में भी राहत मिलती है। जिन्हें हकलाहट की समस्या है वो अगर पुदीने की पत्तियों में काली मिर्च पीसकर और सुबह शाम 1 चम्मच लेती हैं तो इससे हकलाहट की

समस्या दूर होती है। पुदीने की चाय में दो चुटकी नमक मिलाकर पीने से खांसी में लाभ मिलता है। पुदीने का ताज़ा रस शहद के साथ सेवन करने से बुखार दूर हो जाता है। यदि अचानक पेट में दर्द उठ जाए तो अदरक और पुदीने के रस को मिलाकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। पुदीने को सुखाकर उसे पीस कर रख लें। उसे कपड़े में छानकर बारीक पाउडर बनाकर एक शीशी में रख लें। सुबह शाम एक चम्मच चूर्ण पानी के साथ लें। ये फेफड़ों में जमे हुए कफ के कारण होने वाली खांसी और दमा की समस्या को दूर करता है। पुदीने को पानी में उबालकर थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसे गर्म गर्म चाय की तरह पीने से बुखार दूर होता है। बुखार के कारण आई कमजोरी दूर होती है। तलवे में गर्मी के कारण जलन की समस्या में भी पुदीने का रस लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये थे बहनों हमारा आज का स्वास्थ्य टिप्स। अब कार्यक्रम में चलते चलते आइए सुनते हैं एक और गीत।

तो बहनों, कार्यक्रम के अंत में अभी आप सुन रहे थे गीत, तो आइए तो अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। तो हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 846004। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए नारी संसार कार्यक्रम से अपनी रेडियो सहेली विजेता को अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य,

0: शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे इस रोड़ों की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। 1:15 पर आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे 2:10 पर।

श्रोता गाम घर कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 6:30 पर। गाम घर में आज सुनेंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से लोकगीत। संध्या 5 बजे हम आपको सुनवाएंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। युवाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। विद्यापति गीतों का आनंद ले सकेंगे शाम 6:10 पर।

7:52 पर संध्या काल में आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। मैथिली साहित्य का कार्यक्रम सिंगर हार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत मुकेश की आवाज में।

मुकेश और उनके साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कन्यादान से।

श्रोताओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज 25 मई है। आज हमारे सुनील दत्त साहब की पुण्यतिथि हर साल इसी दिन हम लोग मनाते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि हम लोग हर साल इसी तारीख को मनाते हैं। इनका असली नाम बलराज दत्त था। वे अपनी दमदार अदाकारी, समाज सेवा और शानदार जीवन मूल्यों के लिए हमेशा याद किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। आइए सुनते हैं इन्हीं पे फिल्म आया।

लता मंगेशकर की आवाज में यह फिल्म आप सुन गीत आप सुन रहे हैं। गीतकार हैं राजेंद्र किशन और इस गीत को धुन दिया है रवि।

श्रोताओं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे सुनील दत्त साहब रेडियो उद्घोषक भी थे। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उन्होंने रेडियो सिलोन पर एक बहुत लोकप्रिय उद्घोषक के रूप में भी काम किया था। आइए सुनते हैं एक और गीत उन्हीं के फिल्म का, हमराज सिंह।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं आप सुन रहे थे संदेश पूर्व सुनील दत्त पर फिल्माया फिल्म हमराज का गीत, जिसे गाया था महेंद्र कपूर ने, संगीत दिया था रवि ने, गीत लिखा था शाहिर लुधियानवी ने। श्रोताओं मदर इंडिया इसमें उन्होंने बहुत ही दमदार किरदार निभाया था बिरजू के किरदार में। उन्हें हिंदी सिनेमा में उन्होंने अमर कर दिया था। इस फिल्म के सिर पर उनका नरगिस के साथ प्रेम की शुरुआत हुई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और इस गीत को धुनों से सवारा है नौशाद ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मेरा साया से। इस गीत में, इस फिल्म में सुनील दत्त की बेहतरीन अदाकारी के लिए उनकी बहुत सारी प्रशंसा की गई थी। साथ ही इनके बहुत सारे सदाबहार फिल्म हैं, जो हैं हमराज, गुमराह, मेरा साया, रेशमा और शेरा वक्त जैसी बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने अभिनय को, इनके अभिनय को सराहा गया है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना रजा मेहदी अली खान की है, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

मिलन फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुनील दत्त एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध राजनेता भी थे। उन्होंने मुंबई से संसद तक कई बार प्रतिनिधित्व किया और अपनी दरिया दिल और शांति के संदेश के लिए पहचाने जाते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसी आधार पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उनकी फिल्म की एक और गीत, फिल्म वक्त से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी, गीतकार शाहिर लुधियानवी, संगीत रवि के हैं।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म हमराज का यह गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। इस गीत को सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गबन से। यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। गायिका लता मंगेशकर, गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और इस गीत को अपने धुनों से सवारा शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आज सुनील दत्त जी के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय और एक जिंदा दिल इंसान सुनील दत्त साहब को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन। आपके आदर्श, आपका संघर्ष, आपका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे थे सुनील दत्त साहब के फिल्माए गीतों का। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म बेटी बेटे का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताई है। न्यायालय ने कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर रहे जायरीन मिना की टेंट सिटी में आज इकट्ठा हो रहे हैं। वे वहां रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां वे हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस वर्ष हज यात्रा में बिहार के 2552 हज यात्री समेत देश भर के लगभग 1,75,000 यात्री शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय श्रद्धालुओं को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले दो सप्ताह में तेल के मूल्यों में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। बिहार विधानमंडल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पटना के विभिन्न हिस्सों से बस सेवा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के अनुरूप नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज विधानमंडल परिसर से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान गया और रोहतास जिले में हॉट डे का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। नवादा के पुलिस केंद्र के पास गया नवादा रोड पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 वाहन के चालक की मौत हो गई। गया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपर पाती इलाके में पूर्व सांसद रंजीत सिंह के आवासीय परिसर में ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संदिग्ध दवाओं के पैकेट बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तहान में बार बार हो रही चूक पर इजहार फिक्र किया है। अदलिया ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि कौमी जांच एजेंसी ने गुज़श्ता पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं सीखा है। जस्टिस P.S. नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने मरकजी हुकूमत, कौमी जांच एजेंसी NTA और मरकजी जांच ब्यूरो से इन मामलात पर जवाब तलब किया है, जिनमें मेडिकल दाखिला इम्तहान मुनाकिद करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज़्यादा मजबूत और ख़ुद इन्हसार इदारे को लाने का मुतालबा किया गया है। अदलिया ने एजेंसी को आइंदा जुमरात तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज सऊदी अरब के मीना में हज के लिए जमा हो रहे हैं। मक्का से अपना सफ़र शुरू कर रहे आज़मीन मीना की टेंट सिटी में आज जमा हो रहे हैं। वो वहां रात क़याम करेंगे और कल अलसुबह अराफात के मैदान की जानिब जाएंगे, जहां वो हज के अहम अरकान में शिरकत करेंगे। इस साल हज के लिए बिहार के 2552 आज़मीन हज समेत भारत से तकरीबन 175,000 सफ़र हज पर गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने बेहतर, महफूज और आरामदेह सफ़र हज के लिए मुनासिब इंतज़ाम किए हैं। हज सहूलत मोबाइल ऐप के तवसुत से हिंदुस्तानी आज़मीन को इत्तला और शिकायत दर्ज कराने की सर्विस फराहम की जा रही है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है। गुज़श्ता 2 हफ्ते में तेल की कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये फी लीटर हो गया है। असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा को आलमी सूरत हाल का नतीजा बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि हुकूमत हालात पर नज़र रखे हुए है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। बिहार कानून साजिया ने अपने मुलाजमीन और अफसरान के लिए पटना के मुख्तलिफ हिस्सों से बस खिदमात की शुरुआत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के मद्देनज़र नया निज़ाम शुरू किया गया है। कानून साज असम्बली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज कानून साजिया के

कैंपस से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर कुमार ने कहा कि बिहार मुल्क की पहली रियासत है जिसने कानून साजिया के मुलाजमीन के लिए इस तरह की बस खिदमात शुरू की है। रियासत के जुनूबी हिस्सों में सख्त गर्मी और शुमाली हिस्सों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। महकमे मौसमियात ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत जुनूबी मगरब और जुनूब वस्त खित्ता में लू चलने की तंबीह जारी की है। इस दौरान गया और रोहतास जिला में हॉट डे का अलर्ट जारी किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और दीगर खित्तों में रियासत के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में आंधी बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकाम पर आसमानी बिजली गिर भी सकती है। अररिया ज़िला के रानीगंज थाना हलका के तहत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से दोशीजा की मौत हो गई। नवादा के पुलिस सेंटर के पास गया नवादा रोड पर एक तेज़ रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। गया ज़िला के टाउन थाना हलका के तहत पीपरपांती इलाके में साबिक MP रंजीत सिंह के रहायशी क्वार्टर में ड्रग महकमा की और पुलिस की मुश्तरका टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और काबिले एतराज़ दवाओं के पैकेट बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर था, 1296 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती ज्ञापित की है। आवेदन के लिए आवेदक की आयु सीमा मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुल पद 7,150। आवेदन शुल्क जनरल OBC EWS के लिए 300 और STSC PWD के लिए निःशुल्क है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026 है। इस पद के लिए आप आवेदन करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं sbi.co.in पर। इंडियन नेवी SSC एग्जीक्यूटिव IT ऑनलाइन फॉर्म 2026 ज्ञापित कर दी गई है। कुल पद 15, आयु सीमा 1 जनवरी 2002 से लेकर 2007 तक। शैक्षणिक योग्यता 60% मार्क्स इंग्लिश में 10वीं में और 12th में 60% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। साथ में MCA और BCA, BSc, CSIT जैसे डिग्री होनी चाहिए। BE, BT, MTech और BTech, BE, MSc इन सब की डिग्री होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, AI, डिप्लोमेसी की बहुत सारी डिग्रियां होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क निःशुल्क है। अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर कर सकते हैं।

रेलवे आरपीएफ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पद 11,127 निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 500 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 250 है। अंतिम तिथि 14 जून 2026 तक है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे में आरआरबी टेक्नीशियंस और पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, समय हो चला है दोपहर।

0: रेलवे आरपीएफ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पद 11,127 निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 500 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 250 है। अंतिम तिथि 14 जून 2026 तक है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे में आरआरबी टेक्नीशियंस और पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर

0: पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान

0: सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा।

जम्मू कश्मीर में घाटे की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः हम आप आनंद लेंगे आप हमारे किन से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म गीत गाता चल से। गायक कलाकार हैं जसपाल सिंह, गीत और संगीत दोनों ही रविंद्र जैन के हैं।

कल्याण जी आनंद जी के संगे दूरदर्शन में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म गीत से, आवाज मोहम्मद रफी की थी। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और इस गीत को धुन दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम दोस्ती।

हाथी मेरे साथी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत रचना आनंद बख्शी ने की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र की आवाज़ में फिल्म संगम का।

गुलशन बावड़ा के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म जंजीर से, गायक कलाकार थे मन्ना डे, संगीत निर्देशन कल्याण जी अन्ना जी ने किया था। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं राखी कुमारी, आइए इनसे सुनते हैं नचारी।

राखी कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
1: और वो भी भाग गए
0: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया
1: बड़ा।
0: और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं
1: बिल्कुल
0: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। हाँ। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे। अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में

0: कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं।
1: जी
0: तो इसमें 11 11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: और
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा।
1: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
0: बिल्कुल
1: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस पे, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
0: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
1: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती, देखिए खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
0: वो
1: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
0: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मज़ेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
1: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पर कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे
0: अच्छा।
1: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
0: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
0: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जब सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
1: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
0: वाह, बहुत बढ़िया बात।
1: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ। कहते हैं
0: जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
1: हाँ,
0: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
1: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल

0: डाल देना है अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे
1: जी।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वो चीज वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये ज़रूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
0: लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या
0: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम,
0: सबसे पहला काम, अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीज़ें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतः जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए। तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं

0: तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये दो चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा है। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियां दे रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: एक है।
1: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था और अच्छा। जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
2: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
1: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें, और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
2: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
1: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है।

0: ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, अच्छा। जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आँच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा,
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में, सच में। सुदिंग
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जैसे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है। विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है,
1: बहुत
2: ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए। जिंदगी खुश रहने के लिए है और सखी सहेली सुनते रहिए,
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। अनुश्री पाठक,
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को, उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितने

0: ना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है, ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आते हैं जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रीसेंट है
0: जी,
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
1: निदान।
0: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3, T4, TSH का
1: जी।
0: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3, T4, एक होता है फ्री T3, T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3, T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3, T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
1: अच्छा,
0: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3, T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
1: अच्छा,
0: फ्री T3, फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
1: अच्छा,
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम
0: रेंज के बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी, जी जी।
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि हाँ, ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।
2: ओ हो, खोया खोया

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब लूज मोशंस
0: जी।
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा,
0: त्वचा रोग,
1: तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़ क्या है,
0: किधर है,
1: एग्जैक्टली रूट, जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीज़ें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
0: जी।
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब

0: लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती है।
0: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
0: हाँ।
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: लेकिन
0: है।
1: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं

0: पर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके मतलब और ज़्यादा होके वो आपके शरीर पे
1: हो जाती
0: घातक
1: है।
0: होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है, तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं,
1: जी
0: तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
1: वो कैसे?
0: एक है मेंटल मानसिक और एक है फिजिकल।
1: जी
0: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूँगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
1: जी जी
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान
1: गुस्से
0: लाल
1: से
0: होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है, ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है,
1: जी जी
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान,
1: जी
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
1: फोबिया
0: हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा आया तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ़ बनाते, ऑल इज़ वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है।
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल।
1: जी
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल
0: फिजिकल, उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो अलाना
1: वो सारी
0: फलाना,
1: विषैली चीजें
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर प्राकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं,
1: जी,
0: और वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला।

0: सकता हूँ होम्योपैथिक का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे।
1: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है
1: जी,
0: उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे में आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा।
0: बैजू बावरा
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग, मतलब
0: पसीना
1: पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर,
1: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस। मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके, और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा,
0: मायूस
1: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज पे, थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया, तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन, या स्वयं को दवाई देना, प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं, बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना, या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: क्योंकि जैसे ही आप, थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ
1: रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
0: जी,
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से, पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा यानी दूसरी सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आज हम सुन रहे हैं तरुण कुसुम। युवा श्रोताओं, अभी का जो समय है, अभी का जो दौर चला है, इसमें अक्सर देखा जाता है कि कई सारे जो हमारे युवा हैं वो गलत संगत के, या गलत यूं कहें कि गलत माहौल के चक्कर में डेविएट हो रहे हैं। वो जो उनका लक्ष्य है, जो उन्हें स्कूल द्वारा जो पढ़ाई लिखाई या अपने अभिभावक द्वारा जो सिखाए गए जो कार्य हैं, इसके अतिरिक्त उनके गलत संगत के कारण उन्हें कहीं ना कहीं गलत दिशा या वो दिशाहीन हो रहे हैं। और इसके बाद ऐसा देखा जाता है कि कई सारे ऐसे जो बहुत ही कम उम्र में, यानी जो अभी युवा वर्ग हैं, उनमें नशा जो है वो बहुत ही ख़राब जो है ये आदत है। और इससे हमें दूर भागना चाहिए। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे नशा मुक्ति और युवा। नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिससे न केवल नशा करने वाले बल्कि उनके साथ साथ उनके परिवार, समाज व राष्ट्र को भी हानि होती है। नशा करने वाले व्यक्ति नशे के कारण परिवार को तो परेशान करते ही हैं, साथ ही खुद नशा करने के लिए चोरी तथा अन्य आपराधिक घटना को अंजाम देने हेतु मजबूर व बेबस हो जाते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति को नशा करने हेतु नशीली चीज़ें जिसके वो आदि हो चुके होते हैं नहीं मिलने पर कई बार अपने आप को भी क्षति पहुंचाते हैं। कई बार लोग तनाव, चिंता, समस्याओं से भी छुटकारा पाने की कोशिश में गलत कदम उठाते हैं, सोचते हैं कि नशा करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत जो है हम पर वो जो है इसके इसका ठीक उलट हो जाता है। नशा मात्र कुछ समय के लिए ही नशा करने वाले व्यक्ति को आराम देते हैं, लेकिन कई वर्षों तक आगे की जिंदगी को नरक बना देता है। श्रोताओं, बातचीत यूं ही चलती रहेगी, आइए एक लोकगीत का आनंद उठाते हैं।

अभी हम सुन रहे थे अरविंद कुमार झा की आवाज़ में ये देवी गीत। और श्रोताओं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं आज नशा मुक्ति और युवा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि नशा के आदी होने के बाद व्यक्ति अपना मानसिक एवं शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें व परिवार को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ता है। समाज भी धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को नकारना प्रारंभ कर देते हैं।

नशा कई प्रकार के होते हैं। धुएं के रूप में, मुख से कुछ खाने के, नाक के द्वारा भी, कई लोग तो इंजेक्शन के द्वारा भी नशा ले रहे होते हैं। अधिकतर लोग नशा संगति के कारण करते हैं। पहली बार जब लोग प्रारंभ करते हैं तो हंसी मजाक में लेते हैं और बाद में धीरे धीरे इसके आदि होते चले जाते हैं और नशे की लत को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। एक कारण यह भी है कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा की कमी होती है वो बाहरी चीज़ों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नशे इसलिए करते हैं ताकि गम, दुख, दर्द, तनाव को कम किया जा सके, पर ऐसी बात एकदम से नहीं है। नशा कमियों को छुपाने का एक तरीका मात्र है। हम अपने कमियों को, अपने दर्द को केवल दबा सकते हैं, वो भी कुछ देर के लिए, और इसके बाद हम कई सारे रोगों से जब ग्रसित होते हैं तो गम और बाद में बढ़ ही जाता है। नशा से किसी का भी दुख दर्द कम नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उस व्यक्ति को समाप्त कर देता है। श्रोताओं, आइए पुनः गीत संगीत की ओर चलते हैं, एक और लोकगीत सुनते हैं। कलाकार हैं अशोक कुमार पासवान।

0: गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरु जी का इन्हें संबोधन दिया जाता है.
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain. Kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
1: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust, Jaisalmer, and many, many other awards. He got many opportunities.
2: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी. 37 वर्षीय हरमनप्रीत

0: कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
2: Shri Kumar Bose. कला तबला
0: कुमार बोस

0: for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri Kumar Bose, Kala Tabla.
2: Kumar Bose, तबले में एक बहुत बड़ा नाम है. आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे.
0: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect.
1: श्री जनार्दन बापूराव बोथे, समाज सेवा.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं.
0: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेला, साधु सम्मेलन and the founding meeting of Sanstha of the Vishwa Hindu Parishad in Mumbai. He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
3: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है. राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
3: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
4: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
3: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है. वन दादी नाम से जानी जाती हैं. 3,000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधीय और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लुपुआ से आती हैं.
4: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
3: Dr. Ramchandra Godbole aur unke saath Sunita Godbole, aap ek
1: Dr. Ramchandra Godbole.
3: छियासठ साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
4: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
3: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गोबिन, समाज सेवा.
3: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख

0: भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेजी गोबिंद 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report
2: Dr.
1: on the security
2: H. V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के एडीसीओ का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: Shri
1: B. C. Roy
2: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्णलीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज इन
2: हाजी कासम कला ढोलक।
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्री सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। ही हैज आल्सो रिसीव्ड many state level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Mannoprant Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉर्न में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: वेल प्रोफेसर

0: Amidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Rabbari is 23-year khiladi ki T44 unchi kood mein vishv mein aap number 1 hain और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी।
1: देवा लाड दादा लाड कृषि
2: देवालाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्री रंग देवालाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 years यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स सब्जेक्ट्स सच एज लिटरेचर हिस्ट्री आर्ट कल्चर एंड फिलोसफी।
1: प्रोफेसर डॉक्टर सरोज मंडल चिकित्सा कार्डियोलॉजी।
2: 59 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: प्रोफेसर डॉक्टर मंडल हैज सर्व्ड ओवर 6 लाख पेशेंट्स इन ओपीडी ओवर 35 years एंड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्ड एंड सुपरवाइज्ड 50,000 कोरोनरी एंजियोग्राम्स एंड 50,000 एंजियोप्लास्टीज।
1: प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व विज्ञान।
2: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: वाइल वर्किंग इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोफेसर मणि कंजर्व्ड अबाउट 150 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन महाराष्ट्र गोवा दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड डिस्कवर्ड 200 आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड ही डायरेक्टेड 20 एक्सपेडिशंस।
1: श्री नीलेश विनोद चंद्र मांडले वाला समाज सेवा।
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मांडलेवाला He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India for more than 2 decades.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
1: Srimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
2: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ा।

0: उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगाश्री अवार्ड।
2: हरी माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: श्री
2: सत्यनारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
2: Shri
1: been supplied to the
2: Pajanivel khel silambam.
0: Silambam 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन पर आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as Secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshar.
0: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji, jo ki 90 saal ke hain, unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12

0: 1,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
1: Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri
0: have borne fruit.
1: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala, aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
0: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म्ड सत्रीय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर and second president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Also he performed the Bhargeet with Maniram Gayan Mokhtar at All India Radio in 1948.
1: Professor Vempati Kutumb Shastri,
2: 86 saal ke Shastri ji,
1: sahitya evam shiksha
2: vidwanon mein se hain. Aapne advait vedant darshan aur sanskrit kavya shastra mein bahut sare karya kiye hain. Namaskar karte hue, abhivadan karte hue अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। ही हैज आल्सो गाइडेड न्यूमरस डॉक्टरल स्कॉलर्स एंड डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स।
1: प्रोफेसर शफी शौक, साहित्य एवं शिक्षा।
2: 100 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है। प्रोफेसर शफी शौक।
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: श्री बलदेव सिंह खेल, हॉकी कोच।
2: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
1: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne Bharat mein basmati chawal ki kheti ka kayakalp karne mein bahut bada yogdan diya hai aur is contribution ke liye aaj rashtra unhe samman de raha hai.
0: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
1: Shrima

0: श्री शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा।
1: आभारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: श्रीमती शिव शंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली एकेडमिक excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: Sridhar ji, Akashwani ke up mahanidheshak rahe aur vigyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर visceral leishmaniasis कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Professor Sundar is ranked at the top in the world in the field of leishmaniasis and kalaazar from the year 2013 to date. He has published extensively in academic journals including NEJM and
0: Dr.
2: The Lancet,
0: etc. Dr. S. G. Sushilamma, Samaj Seva.
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
2: Dr. Sushilamma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
0: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत।
1: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
2: He became a master of the art and served as authorer in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
0: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
1: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
2: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
0: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
1: ज्यादा धन्य हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था।

0: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of think global, act local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Jujal Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: प्रोफेसर जूसर वासी आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक के क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals and conferences.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: Professor 2019. Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling Pahadiyon ke ek pratishthit वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ही लेड अ 6-year कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वाज अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस।
2: श्री हैली वार, समाज सेवा।
0: और अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: श्री वार हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, जो कि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the
1: ceremony. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया
4: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत
5: Census index of romance and sex is kiss between free economy third world country on Valentine's Day with Puran Masi and Andre Agassi.

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। अब हम समाचार सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानी पूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और

0: पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से। जी हां श्रोताओं, आप अपने एंड्रॉयड सेट के मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से हमें सुन रहे हैं। लीजिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष बचे हुए कार्यक्रम के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। विद्यापति गीत के बाद 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर, जिसके अंतर्गत हम आज सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। इसी के अंतर्गत शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे। वहीं 7:30 पर सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार। इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, कुछ फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:52 पर संध्याकाल, और मैथिली में हमारा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:15 पर।

9 बजे रात्रि 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हेलो आकाशवाणी। इसके अंतर्गत हमारे मोबाइल नंबर होंगे 94300029353। एक बार पुनः बता दें, 94300029353। इस नंबर पर आप हमें फ़ोन करके फिल्म संगीत सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं विद्यापति गीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं गौतम कुमार।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं विद्यापति गीत। हमारे अगले कलाकार हैं काशीनाथ झा किरण।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मैथिली संवाद, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी प्रियंका मिश्र। सर्वोच्च न्यायालय नीट परीक्षा में बेर बेर भऽ रहल चूक पर चिंता जतौलक अछि। न्यायालय कहलक जे ई दुखक गप अछि जे राष्ट्रीय जांच एजेंसी पिछला पेपर लीक विवाद सँ कोनो सीख नहि लेलक। न्यायाधीश PS नरसिम्हा आ आलोक आराधेक पीठ केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सँ ओहि याचिका सब पर जवाब मंगलक अछि जाहि मे मेडिकल प्रवेश परीक्षाक आयोजित करबाक लेल जांच एजेंसीक स्थान पर कोनो बेसी मजबूत आ स्वायत्त संस्था के अनबाक मांग कयल गेल छल। न्यायालय एजेंसी के बृहस्पति दिन धरि जवाब देबाक निर्देश देलक अछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 सँ लऽ कऽ माध्यमिक स्तर धरि मैथिली भाषा के मातृभाषा विषयक रूप में मान्यता प्रदान कयल गेल अछि। दरभंगाक सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर सोशल मीडिया पोस्ट में ई जनतब देलनि। ओ जनौलनि जे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी हुनका एहि संबंध में पत्र पठौलकनि अछि। सांसद जनौलनि जे CBSE शैक्षणिक सत्र 2026-27 सँ पाठ्यक्रम में मैथिली के शामिल कऽ लेल गेल अछि।

0: नव पाठ्यक्रम सीबीएसई के वेबसाइट पर सेहो उपलब्ध अछि। पत्रक अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसाक आलोक में कक्षा 1 सँ माध्यमिक कक्षा धरि मातृभाषा मैथिली के शिक्षणक माध्यम बनाओल गेल अछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई राष्ट्रभवन में 66 विशिष्ट लोकन के वर्ष 2026 लेल पद्म पुरस्कार प्रदान कयलनि। एहि समारोह मे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गृहमंत्री अमित शाह सेहो उपस्थित छलाह। बिहारक 3 विभूति के पद्म पुरस्कार प्रदान कयल गेल। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आ डोमकच नृत्य के मुख्य धारा में अनबाक लेल विश्वबंधु के मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कयल गेलैन। ओतहि भोजपुरी लोक गायिका भरत सिंह भारती के कलाक क्षेत्र में हुनकर विशिष्ट योगदानक लेल पद्मश्री देल गेलैन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैथिली के सीबीएसई पाठ्यक्रम में मातृभाषाक रूप में मान्यता देबाक लेल केंद्र सरकारक पहल के स्वागत कयलनि अछि। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट में कहलनि जे ई गौरवक विषय अछि। एहिसँ मैथिली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आ मातृभाषा मैथिली के शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान भेटत। मुख्यमंत्री श्री चौधरी कहलनि जे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एहि फैसला सँ मिथिला सांस्कृतिक अस्मिता आ भाषाई गौरव बढ़त। वार्षिक हज यात्रा लेल भारत सहित दुनिया भरि सँ लाखों जैरीन सऊदी अरब मीना में जमा भऽ रहल छथि। एहि वर्ष हज यात्रा में बिहारक 2552 हज यात्री सहित देश भरिक लगभग 175,000 यात्री भाग लऽ रहल छथि। केंद्र सरकार सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करबाक लेल व्यापक व्यवस्था कयलनि अछि। तेल विपणन कंपनी सब पेट्रोल आ डीजलक दाम एक बेर फेर सँ बढ़ेलक अछि। पेट्रोल 2.61 रुपया आ डीजल 2.71 रुपया प्रति लीटर महग भऽ गेल अछि। पिछला 2 सप्ताह में तेलक दाम 4 बेर बढ़ल अछि। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपया आ डीजल 99.36 रुपया प्रति लीटर भऽ गेल अछि। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार पेट्रोल और डीजलक दाम में भेल बढ़ोतरी के अंतर्राष्ट्रीय स्थितिक परिणाम बतौलक अछि। डॉक्टर कुमार कहलनि जे सरकार एहि स्थिति पर नजरि रखने छथि आ जल्दिए एहि पर नियंत्रण कऽ लेल जायत। ओ लोकसभसँ ईंधन बचत करबाक लेल अपील कयलनि। बिहार विधानमंडल अपन कर्मचारी अधिकारी सभक लेल पटनाक विभिन्न भागसँ बस सेवा शुरू कयलक अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पेट्रोल डीजल बचेबाक अपीलक अनुरूप ई नव व्यवस्था शुरू कयल गेल अछि। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार आई विधानमंडल परिसर सँ बस सभ के हरियर झंडा देखा कऽ विदा कयलनि। काल्हि चेतना समिति पटना में चेतना मिथिला हस्तकला प्रदर्शनी सह बिक्री हाट लगाओल गेल। विदित अछि जे ई हाट प्रत्येक मासक 4 रवि दिन लगाओल जाइत अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनयवला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तू भाई के दिस नमस्कार, संगे उगना भाई अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार सत्तू भाई। सत्तू भाई, आई सोम दिन है, आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल ल क अबै छन हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा। एहि कार्यक्रम अंतर्गत हिनका लोकनिक लेल ल क आयल छन एकटा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, एकर संगे गीत नादक आनंद सेहो।

0: एक गोट बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित भेंट वार्ता सेहो सुनब जे बुजुर्ग लोकन के सम्मान देव बड़ आवश्यक है
1: आवश्यक है
0: तो इसब सुनब मुदा ताई से पहिने अपना में किछ दू टप्पी क ले
1: देखू जे आई बहुत नीक दिवस है उगना भाई विश्व फुटबॉल दिवस उगना भाई विश्व फुटबॉल दिवस हरेक बरख 25 मई का मनायल जात संयुक्त राष्ट्र महासभा 7 मई 2024 का सर्वसम्मानित से अह दिन के आधारिक रूप से घोषित करवा के प्रस्तावित पारित केने छलथि ऐतिहासिक शुरुआत 25 मई 2024 का पेरिस में भेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पहिल बेर एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन कैल गेल छल जैसे दुनिया भर में सब टीम हिस्सा लेने छल अही दिन खेल के वैश्विक लोकप्रियता शांति कूटनीति आ सामाजिक समावेश के बढ़ावा देव में फुटबॉल के भूमिका के जश्न मनायल जात फीफा अही अवसर पर 21 से 25 मई धर फुटबॉल सप्ताह के रूप में मनायल जात जाहि में 21 मई का फीफा के स्थापना 1904 के स्मरण में शामिल है उगना भाई खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत बेसी लाभदायक है तो खेल हमरो लोकन के खेलबा के चाहे खास कर के फुटबॉल क्रिकेट जे शारीरिक मेहनत वाला खेल है वो खेलबा के चाहे
0: सबको भाई फुटबॉल अपना सब कई ठाम बड़ प्रचलित खेल छल आ एकर से प्रायः सब विभाग में जाहि विभाग में खिलाड़ी कोटा छलन जाहि से हुनका लोकन के खेल के आधार पर नौकरी भेटै छलन तो फुटबॉल के खिलाड़ी के सेहो कोटा छलन अही से बुझल जा सकैत अछि जे फुटबॉल के कतेक महत्व अइ खेल के छल एकर संग आय एकटा और विशेष दिन अछि ओ अछि गंगा दशहरा हमरा लोकन जनैत छी जे पौराणिक कथाक अनुसारे आध्यात्मिक कथाक अनुसारे आइए के दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित
1: भेल चलत अछि
0: आ तें आजुक दिन स्नान दान आ एहन धारणा अछि जे हमरा लोकन के जे किछ मनोकामना रहैत अछि आजुक दिन जो चाहै छी तो पूरा होइत
1: अछि
0: तो आजुक दिन के बड़ बेसी महत्व अछि हमरा लोकन फिर गपशप करब मुदा आप पहिने सुनै छी
1: एकटा लोकगीत लोकगीत बाद में सुनब उगना भाई हाँ कहियो
0: पहिने हमरा लोकन सुन ले छी भेंट वार्ता
1: अच्छा
0: बुजुर्गों का सम्मान आवश्यक भेंट वार्ता कार छथि उमा शंकर झा
1: इनका से गप कर रहल छथि शंकर कुमार चौधरी सुनल जा
2: एखन हम शंकर कुमार चौधरी लक्ष्मी सागर सार्वजनिक दुर्गा मंदिर निकट साधु गाछी मोहल्ला में आयल छी एतो बैंक सेवा से अवकाश प्राप्त एक गोटे हिनका से ई हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकन के जनतब देव चाहे छियन जे समाज में बुजुर्ग लोकन के मान सम्मान एखनुक बेर में बड़ा आवश्यक है जे प्रायः देखल जा रहल अछि जे आधुनिकता के बेर में भौतिकवादी जे परंपरा सब के लोक ध्यान दऽ रहल छथि ताहि में कतौ नै कतौ सँ परिवार बिखर रहल अछि आ युवा संतान ई लोकनि अपन दायित्व सँ मुकरि रहल छथि एहन परिस्थिति में अहाँ अपन की जनतब देव चाहे छियन अपने के नाम भेल उमा शंकर झा जी तो स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकन के जनतब दियन जे वृद्ध लोकनिक मान सम्मान के की स्थित छन

0: समाज।
1: अखनुक समाज में तो स्थिति ठीक नहीं छन, जे जै हिसाब से भौतिकवाद बढ़ रहल छे, किछ आइ काल्हि के धियापुता के अपन सेहो समस्या छन, जे कमाय लेल बाहर जाय पड़तन। लेकिन एक क्रम में जे मिथिला के सामाजिक व्यवस्था छलैया बुजुर्ग के मान सम्मान, तकर दिन से दिन क्षरण भेल जा रहल अछि। और किछ जगह तो वृद्धाश्रम खोल के सूचना सेहो हमरा सबके भेटल अछि, जे हमरा सबके संस्कारगत मिथिला संस्कृति में ई एकटा अजीब ढंग से बुझा रहल अछि, जे हमेशा जे बुजुर्ग व्यक्ति छथि घर के मुखिया मानल जाय छलथ, एकटा ओकरा मेह कह सकै छी, मेह बुझि के ओकरा चारू तरफ लोक घूमै छलै, सामाजिक एकटा प्रतिष्ठा छलै, हुनके नाम से जानल जाय छल परिवार। लेकिन आब ओहि सब ढंग के बात छै नहि, तऽ आब एहिमे अखन कोनो एहन किछु कहल नहि जा सकै छै। मान सम्मान वापस भेनाइ तऽ जरूरी छै ने, चूँकि हुनकर देख रेख आब ज्यों ज्यों समय बीतै छै त्यों त्यों आदमी कमजोर होइत चलि जाइ छै, दोसर के सहारा के आवश्यकता होइ छै, जाहिमे अखन कमी बुझना जा रहल अछि।
2: बुजुर्गा अवस्था सब गोटा के अबैत छन, जे आइ जन्म लेलनि युवा हेता फिर बुजुर्ग हेता, मुदा ई अबै वला समाजक जे एखनुक युवा वर्ग छथि, हुनक संतान छथिन, हुनक ई दायित्व भऽ जाइत छनि जे अपन जे बुजुर्ग माय बाबूजी एकर संगे बाबा बाबी कक्का काकी सब पर ध्यान दैत, विशेष रूप से जखन ओ लोकनि बीमार पड़ैत छथि अथवा हुनका कखनो कोनो प्रकारक सेवा के आवश्यकता पड़ैत छनि, तऽ एहि प्रसंग अपने के की विचार है?
1: संस्कृति के क्षरण भऽ रहल छै और धीरे धीरे संयुक्त परिवार से सूक्ष्म परिवार के तरफ लोग बढ़ले, चाहे ओकर आवश्यकता रहल होय नहीं रहल होय, नतीजा ओकर आप सामने आबि रहल अछि, जे कोनो बच्चा जे छै बहुत बच्चा के अपना दादा दादी से भेटो नहीं भऽ पबै छै, ने ओ सिर्फ नाम टा जो भेटो भेल तो बहुत थोड़े काल के लेल, तो धीरे धीरे वह सूक्ष्म रूप आब अपना में सिमट के आधुनिकता के तरफ आदमी वही चलते सेहो हमरा लागि रहल अछि, जे किछु ने किछु कतौ ई भऽ रहल छै, जे ई दायित्व बनै छनि अखन के पीढ़ी के, जे अपना बच्चा सबके अपन संस्कृति के शिक्षा देथुन और परिवार में बुजुर्ग के की महत्व छै ताहिसँ जरूर परिचय करब। महत्व नहि पता छै कि बाबा के की महत्व छन और हुनका अपना परिवार के लेल की करय पड़लनि और केना परिवार बनले, एहि सब चीज के शिक्षा या जानकारी जाबत तक बच्चा सबके नहि देल जेतै तऽ समानक कल्पना केनाई थोड़े मुश्किल अछि, तऽ एहि तरफ थोड़े ध्यान देबऽ पड़तै, जे कम से कम जे व्यक्ति कोनो छथि बाहर कतौ छथि ओ अपना धियापुता के अपना परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी, हुनकर संघर्षक जानकारी देथुन और कम से कम अपना बच्चा सबके सामने में अपन माय बाप के सम्मान जरूर करथि।
3: उगना भाई, अखन हमरा लोकनि सुनै छलौ भेंट वार्ता, बुजुर्गों का सम्मान आवश्यक। भेंट वार्ताकार छलथि उमा शंकर झा, इनका से गप कऽ रहल छलथि शंकर कुमार चौधरी। आब हमरा लोकनि से श्रोता लोकनि के एकटा लोकगीत सुना दियनि,
4: सुनल जाय। चंद्रिका कुमारी गावल महेश वाणी।

0: उगना भाई अखन हमरा लोग सुनै छलौं चंद्रिका कुमारी के गाली गीत गौरी दौरी
1: आ आब हमरा लोग सुनै छी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद त सुनल जा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बुनियाद। नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज

0: चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, अच्छा लगा। सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर, ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051। और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002। और एक वेबसाइट भी है, www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआ।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो मैं तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी, तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी, वो फिर से खेल रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।

0: कल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना। इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या कहाँ कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002, 9431899002 और 1800121001। डॉक्टर नीरज बताइए। हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है? हाँ
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसीलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश, और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121001। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है, इसके अलावा क्लिनिकल

0: पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस से स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो ड्यूअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। और इस पे हमारे टीचर, हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 ही सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे एक नया कोर्स आया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: अखन हमरा लोकन सुने छलौं है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आब अही के संग हमरा लोकन खेती गृहस्थी में किसान भाई के बहुत बहुत स्वागत करै छियन।
4: हमहू स्वागत करै छियन खेती गृहस्थी के दलान पर। आ हिनका लोकनिक लेल आइ लक आयल छी एकटा भेंट वार्ता, एकर संग गीत नादक आनंद लेब, मौसम संबंधी जे सूचना एकरो जनतब देवन, मुदा अइ सब से पहिने दूटा पी कऽ लै छी। सतो भाई, हमरा लोकनि पशुधन रखने छी मुदा ओकर देख रेख जो नीक से नहि करब तो रखबाक कोनो लाभ नहि हैत। आ विशेष रूप से पशु जे अछि ओ जीव अछि, बजैत नहि अछि, तो हमरा लोकनि के ओकरा जे रखैत छी, पोसैत छी, तऽ ओकर लक्षण पर ध्यान राखऽ पड़ैत अछि आ ओकर जे लक्षण किछ देखैत छियै ताहिसँ बुझबामे अबैत अछि जे

0: ई पशु स्वस्थ अछि कि ई पशु बीमार अछि अस्वस्थ अछि, तऽ एहि प्रसंगमे जे पशु चिकित्सक लोकनि ओ अपन किछु दिशा निर्देश देलनि अछि जे केओ दुधारू पशुके पोषनिहार लोकनि छी तऽ ओ ओकर लक्षण देख कऽ बुझि सकैत छी जे पशु एखन स्वस्थ अछि कि नहि अछि अथवा बीमार अछि।
1: ओहि लक्षणमे अहाँके अचानक सुस्ती आयब, खाना पीना बंद कऽ देब, जुगाली बंद करब, कम से कम दूध उत्पादन मे भारी गिरावट शामिल अछि। एकर अलावा जे अछि से कान लटकायब, कान नाक के सूखापन, झुंड सँ अलग खड़ा होयब, ई सब संकेत यदि दिखाई दिए तऽ समझबा के चाही जे पशु जे अछि से बीमार अछि। तऽ संगे समान व्यवहार मे शारीरिक स्थिति जे ओकर बतबैत अछि सुस्ती, पशु के झुंड सँ अलग खड़ा रहब, सामान्य सँ अधिक लेटब रहब, उठबा मे परेशानी होयब, आँखि आर कान मे अहाँके लाल पानि बहब, संगे कान के सामान्य सँ अधिक ठंडा या गरम होयब, ई सब देखाइ दिए तऽ समझबा के चाही जे पशु अस्वस्थ अछि। संगे बाल त्वचा, बाल मे खुदरापन, संगे अहाँके त्वचा मे रूखापन, ई सब दिखाइ दिए तऽ सेहो समझबा के चाही जे पशु जे अछि अस्वस्थ अछि।
0: संगे
1: अस्वस्थ पशु आराम कम करैत अछि, लगातार जुगाली बंद कऽ दैत अछि, आ पशु के जुगाली बंद करब सँ समझबा के चाही जे पशु अस्वस्थ अछि। गोबर मे सेहो बदलाव भऽ जाइत अछि, गोबर के अत्यधिक पतला होयब, दस्त एहन शुरू भऽ जायब, चाहे कब्ज भऽ जायब, ई सब चाहे दुर्गन्ध अथी गोबर मे देब, ई सब यदि देखाइ दिए तऽ सेहो समझबा के चाही पशु अस्वस्थ अछि। हाँ
0: ठीके कहलहुँ जे ई सब लक्षण अछि, मुदा हमरा लोकनि देखैत छी किछु सामान्य लक्षण ओकर जो तऽ चट सँ बुझि जाइत छी जे पशु अस्वस्थ अछि कि स्वस्थ अछि। जाहिमे सबसँ पहिने ई ध्यान राखी जे जकरा जुगाली कहि रहल छी ओकरा हमसब पाउज कहे, तऽ पशु पाउज कऽ रहल अछि कि नहि। पाउज भेल जे ओ जे चिब्बैत अछि, मुँह सँ लार जकाँ जे निकलैत अछि, उज्जर फेन जकाँ, तऽ ओ ओकरा मुँह सँ स्पष्ट रूप सँ निकलि रहल छै कि नहि, आ ओ एकदम पशु निश्चिंत मुद्रा में ओ अपन पाउज करैत अछि। एकर संगे पशु के गर्दन जो ओ बीमार रहत अस्वस्थ रहत तो खसा कर रहत,
1: खसा कर रहत छे,
0: आ जो स्वस्थ रहत तो उठा कर रहत,
1: उठा कर रहत छे।
0: ई सब जे किछ सामान्य लक्षण है एहि पर ध्यान दी।
1: संगे स्वस्थ पशु जे अछि से हरदम सतर्क फुर्तीला आ झुंड के साथ चल वाला होइत अछि। तऽ आब हमरा लोकनि गपशप केलहुँ, आब एकटा एहने सन भेंट वार्ता सेहो अछि पशुओं के संक्रामक रोग एवं बचाव के उपाय। आ भेंट वार्ताकार छथि डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा, इनका से गप कऽ रहल छथिन अनिल कुमार कन, आ प्रस्तुति असद दाऊद के छथि।
0: तऽ सुनल जाय दुनू गोटा के बीच भेल ई गपशप।
1: सुनल
2: किसान भाई लोकनि, आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। खेती पथारी वाला काजक संग हम सब पशुपालन वाला काज सेहो अदौ काल से करैत आबि रहल छी। खेती पथारी में जना समस्या हुई है, ठीक ओहिना पशुपालन के क्षेत्र में सेहो बहुत रास समस्या मालजाल के हुई है। ते आई आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा। डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, संगे अपने के नमस्कार।
3: नमस्कार अनिल बाबू।
2: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहब जे पशु के बहुत तरह के रोग हुई है, जाहि में संक्रामक रोग सब बड बेसी घातक हुई है, कतेक पशु के जान चल जाइए जानकारी के अभाव में वा सजगता के अभाव में कह सकै छी। तो सबसे पहिने तो हमरा ई कहू जे संक्रामक रोग सब

0: मालजाल के किया हुई है आ सब बचवों के लेल सामान्य परहेज की सब करक चाहिए।
1: पशुपालक भाई अनिल बाबू जना कहला संक्रामक रोग जे छे वो जितबे आसानी से पकड़े छे उतबे वो खतरनाक ओकर असर होइ छे। ई कहियो कहियो एहन परिस्थिति भ जात कि सब व्यवस्था के बाद वहाँ ओकरा कंट्रोल नहीं कर सकै छी। तैं संक्रामक रोग से बचाव के सबसे आसान सुलभ और निश्चिंत तरीका छे जे साल में शेड्यूल के मुताबिक पशु के टीकाकरण कराबू। जेना FMD टीकाकरण होइ छे जून में और दिसंबर में, जेना HSBQ के टीकाकरण होइ छे साल में एक बार जून के आसपास। तो ऐसे की है जेना अब अहाँ केना पकड़बे अगर पशु के मुँह से अचानक लार खसे लगले, ओकरा मुँह जीभ में घाव भ गेलै, ओकरा खाना में दिक्कत भ गेलै, ओकरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा लगले, बच्चा एहिमे बेसी प्रभावित होइ छै दूध पीला पर माय के, तो अहाँ बुझियो कि ओकरा FMD या खुरपका मुँहपका कहै छै से बीमारी भ गेलै। दोसर बीमारी लंगरा जकरा BQ कहै छै ब्लैक क्वार्टर, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी छै जे कोनो पशु के भ गेला पर ओकर पैर में स्वेलिंग होइ छै, जे स्वेलिंग के अहाँ अगर खूब फूल जाइ छै ओकरा अगर आंगुर से दबेबै तऽ बालू के पोटरी के जेना दबाबै के आवाज होइ छै तेहन क्रिपिटेटिंग साउंड अहाँके ओहिमे आयत। पशु के बुखार बहुत ज्यादा भ जाइ छै, पशु काज केनाइ पाज केनाइ सब बंद कऽ दै छै, तो ओकर भी अहाँ ब्लैक क्वार्टर भेलै तत्काल सबसे पहिने बालू के पोटरी बनाकर तवा पर बालू के गरम कऽ ओकरा कपड़ा में राखि कऽ ओकरा खूब सेकू और तत्काल पशु चिकित्सक से इस संबंध में संपर्क करू।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहब जे बचाव के लेल बरसात से पहिने टीकाकरण तो हेबाक चाही, चिकित्सा के लेल सामान्य रूप से अब तो दवाई बीरो के बारे में सामान्य गप आदमी से हो बहुत रास गप बुझा लगल
1: जी जी,
0: जना पेंसिलिन भेले एम्पिसिलिन व सिफालैक्सिन एकरो व्यवहार कैल जा सके।
1: निश्चित रूप से अहाँ के कनिको मवेशी के बुखार बढ़ल तो ओकरा सबसे पहिने एमोक्सिसिलिन पेंसिलिन के भी भेलै एमोक्सिसिलिन ओहिसँ ओकर प्रयोग अहाँ तुरंत कऽ सकै छी। ओहिमे आइ काल्हि एमोक्सिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग भी आबऽ लगलै है कि अगर अहाँके बुझाइए कि एक दिन भंग के बाद हमरा फिर सुई देबऽ में दिक्कत ककरो बजाबऽ के पड़त, तो एक दिन अगर अहाँ पेंसिलिन लॉन्ग एक्टिंग दऽ एम्पिसिलिन दऽ देबै तो ओ 3 दिन तक काज करत और बहुत सारा बीमारी के ऊपर कंट्रोल भऽ जाएत। जँ बुखार छै तऽ मेलोक्सिकाम पैरासिटामोल फ्लूनी मैक्सिमिन ई सब दवाई अबै छै तकरा अहाँ दियौ, और बहुत ज़्यादा साँस चलऽ लगलै मवेशी गाभिन नहि तऽ ओकरा डेक्सामेथासोन या आइसोफ्लुपोरिडोन ई अबै छै। ई एते दवाई अहाँ प्रारम्भिक रूपसँ भी कोनो अगर कनी मनी जनै छी तऽ अहाँ निश्चित रूपसँ दऽ सकै छी जाहिसँ बीमारीमे बहुत नियन्त्रण भऽ जायत।
0: डॉक्टर साहेब, डकहा वा गिल्टी रोग सेहो मालजाल के भऽ जाइए, इहो एकटा संक्रामक रोग अछि, एहिसँ बचाव के लेल आ सामान्य उपचार के संबंध में कहल जाए।
1: डकहा के नाम सुनते पशुपालक रुआ काँपि जाइ छनि। डकहा के सबसँ पैघ लक्षण छै कि ओकर पशु के तापमान 104 से बेसी 106-107 तक भऽ जाइ छै, पशु बहुत ज्यादा हाँफऽ लागत, मुँह से लार निकलऽ लागत, कंठ से लऽ कऽ ओकरा दुनू पैर के बीच तक ओहिमे सूजन भऽ जायत और ओहि के बहुत ज्यादा सीरियस भेला पर मवेशी के मृत्यु भी भऽ जाइ छै सांस नली में गड़बड़ी के कारण। तैं पशु अगर अहाँ के डकहा के गला घोटू के शिकायत भऽ रहल अछि, डकहा के शिकायत भऽ गेलै तऽ अहाँ सबसँ पहिने एम्पिसिलिन डेक्सामेथासोन एकर और एनाल्जेसिक में मेलोक्सिकाम ग्रुप के सुइया का लगा कर तहन तुरंत अस्पताल या योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करू ताकि अहाँ के पशुधन बचि सके।
0: देखियो कखनो कखनो एहनो देखल जाइ छै डॉक्टर साहब जे माल जाल जे छै कोनो एहन खर पात खा लेलक जे बिखाह होइए तो पशु के आपातकालीन स्थिति में विस्पान कऽ लैए, तो ओहिसँ बचाव के लेल की करक चाही?
1: आइ काल्हि बढ़ैत वैज्ञानिक खेती के नेक से एक वैज्ञानिक तरीका बढ़लै है जाहिमे विभिन्न प्रकार के कीटनाशी के प्रयोग होइ छै। भीषण गर्मी पड़ला से भी बहुत सारा चारा जे छै से ओकर सही से ग्रोथ नहि भेला पर ओहिमे पॉइजनिंग डेवलप कऽ जाइ छै। जे तऽ सबसँ पहिने अगर पशु एहन घास खा लेलक जाहिमे कोनो तरह के छिड़काव भेल छै दवाइ के तऽ ओकरा तुरंत तुरंत उठब बैसे लागत, छटपट छटपट करऽ लागत, पेट में दर्द हुअ लागत। तैं अहाँके पास अगर खाय वाला सोडा उपलब्ध है तऽ खाय वाला सोडा सुसुम पानि में घोरि के ओकरा पिया दियौ। ओहूसँ जल्दी अगर दही कतौ उपलब्ध है तऽ दही दऽ दियौ। ओहूसँ जल्दी विनेगर होइ तऽ ओ दऽ दियौ। पशु के पूरा शरीर के रगड़ी कहाँ खूब धोइयो। अब आबि जाओ जनेरा खेला से सबसे ज्यादा आइकाल्हि

0: गर्मी के समय में जनेरा खेला से प्वाइजनिंग के बहुत ज्यादा संभावना रहै छै। तो जनेर के अगर खा लेला से पशु में ई सब लक्षण आयल, पैर हाथ खूब पटकल लागल, मुंह से गौंज आवे लागल, फेन आवे लागल, पशु चित भ के लेट गेल, एहि स्थिति में अहाँ सोडियम थायोसल्फेट के घोल, सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल और एट्रोपिन सल्फेट पशु के भार के मुताबिक 2 एम्पुल से लऽ कऽ 10-12 एम्पुल तक दऽ सकै छी। संगहि कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट के इंजेक्शन ओकरा आई भी चढ़वा सकै छी। तो जनेरा वाला में अहाँ के स्थायी कंट्रोल भ जायत और पशु अहाँ के बचि सकैए।
1: एकर अतिरिक्त किछ आर जानकारी डॉक्टर साहब हम अहाँ से चाहब, जे दुधारू पशु अछि ओहि पशु सब में प्रजनन संबंधी समस्या सेहो उत्पन्न भ जाइए, जेना एकटा होइ छै रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जकरा जड़ि बाहर निकलब कहै छियै, तऽ ओकर कारण की होइ छै, देखभाल में कमी होइ छै कि खान पान में कमी होइ छै, तऽ सामान्य रूप से कहल जाए जे एकरा लेल की करक चाही।
0: देखियौ, सबसे बड़का जखन पशु गाभिन रहै छै तऽ ओ अहाँके बैंक छै, बैंक भेलै एटीएम टाइप के, लेकिन एटीएम के पिन अहाँके तखन भेटैए जखन पशु बिया जाइ छै। आ ओहि समय में अहाँ अगर ओकरा अंतिम 3 मास जे भेलै ओहि मास में अगर बढ़िया से ओकरा खान पान अहाँ नहीं देलिए तो अहाँ के एटीएम पिने नहीं भेटत, कमजोर भ जाए, तो ओहिसे पशु के सबसे पहला दिक्कत ओहिमे हैत कि अहाँ के ओकर जड़े नहीं निकलत। ओहिसे बचे के लेल कम से कम 2 मास पहिने ओकरा कॉपर, कोबाल्ट, विटामिन ई, एहिसे संबंधित जे टैबलेट छै ओहो दऽ सकै छियै। बहुत कंपनी अहाँ के ओकर पाउडर बनबै छै, ओ अहाँ के 2 किलो पाउडर ओकरा खुआ दियौ एकटा पुड़िया सुबह शाम, ओहिसे भी अहाँ के बस जे छै से जर आसानी से खसि पड़त आ कोनो तरह के इन्फेक्शन नहि होयत।
1: एकटा आरो रोग होइ छै दुधारू पशु में, जे गर्भाशय में कोनो तरहक संक्रमण भ गेल, इन्फेक्शन भ गेल, जकरा गर्भाशय शोथ सेहो कहल जाइ छै, ई किया होइ छै आ जँ भ गेल तऽ एहि लेल सामान्य रूप से की करक चाही?
0: दू तरह के गर्भाशय में इन्फेक्शन दू तरह के होइ छै, एकटा तऽ जे नहि बियायल अछि ओकरो में होइ छै इन्फेक्शन, जाहिके चलते ओ पाल विलम्ब से खेलक, पाल खा के उलट गेल रही रही के। गर्भाशय में अहाँ देखबै कि उज्जर रंग के या पानी रंग के, एकटा बात जान लियो कि कोनो सामान्य पशु के जे निगार अबै छै जागह के, ओ घोंघा के फुरबे ओकर जे पानी जेना खसै छै तहने पानी खसै छै। आब ओहिसँ कनिको अंतर पड़लै, मलमाट भेलै या दुधा मने दुधिया रंग के भऽ गेलै या पस रंग के भऽ गेलै, एहिके मतलब ओकरा इन्फेक्शन कतौ ने कतौ से चलि गेलैए। ओ इन्फेक्शन 3-4 तरह से जाइ छै, नीचा में बैसल अछि जतय ओ गोबर लागल छै, गंदगी लागल छै, दोसर मवेशी के निगार खसल छै ओकरा में सटि गेलै, ओकरा में चलि गेलै, या कृत्रिम गर्भाधान के काल में जँ ओकर इंस्ट्रूमेंट सही से स्टरलाइज नहि रहलै, जे दोसर पशु के जे इन्फेक्शन छै ओ सीमेन डालै छै तखने ओकरा बजदानी में चलि जाइ छै। तेसर, जँ अगर साँड़ से अहाँ पाल खुआबै छियै तऽ साँड़ में भी इन्फेक्शन बहुत तरह के रहै छै जे ओहिमे चलि जाइ छै। दोसर, दुधारू पशु में भी इन्फेक्शन होइ छै बजदानी में, जेना ओकर जड़ सही से नहि निकललै या जे कनी बचलै कस ओकरा ओहिमे सड़ि गेलै, जाहिसँ ओकर व्हाइटिस डिस्चार्ज अबै छै, एहि लेल ओकरा बढ़िआँ से 3 दिन कम से कम 3 दिन ओहिमे लिक्सेन या और तरह के ऑक्सीवेन बहुत तरह के होइ छै एंटीबायोटिक, ओकरा 3 तरह के एंटीबायोटिक दऽ कऽ 3 दिन कम से कम दियौ, विटामिन ए के इंजेक्शन दियौ, ओकरा बाद नियोमाइसिन सल्फेट के सुई दियौ, ताकि ओकर बसदानी जे छै से दुरुस्त भऽ जाए और अगला बेर पाल खाए तो कोनो तरह के ओकरा शिकायत नहि होइ।
1: एकटा समस्या दुधारू पशु में होइ छै रिपीट ब्रीडर के, जे बेर बेर अहाँ पाल खुबै छियै मालजाल के मुदा गर्भधारण नहि करैए।
0: रिपीट ब्रीडर के जान लियौ, 3 तरह ओना 3 तरह के होइ छै, लेकिन अहाँ 2 तरह पर मेन ध्यान दियौ। एकटा देखबै अहाँ जे 21 दिन पूरा नहि भेल आ ओहिमे जे छै से मवेशी के निगार ठीक आबि रहल अछि, ठीक से जागि रहल अछि आ तैयो 21 दिन पर उलटि गेल, ओकर कारण छै जे अंडा शुक्राणु के अंडा से जे संयोग भेलै, जे जायगोट जे बनलै ओकरा में कमजोरी छै, या तो ओकर ऊपरका जे परत होइ छै ओ कमजोर भऽ गेल छै, या पशु में कोई न्यूट्रिशनल अभाव छै, जै के चलते ओ 21 दिन से पहिने ही ओ जे छै से फिर रिपीट कऽ जाइ छै, ओ मरि गेल आ ऊपर रिपीट कऽ गेल। उपाल खालकै यऽ लेकिन तैयो ओकर पोषण सही से नहि भेलै, अर्ली एम्ब्रायनिक डेथ कहै छै ओकरा, ईईडी, जे ओ पोषण सही से नहि भेलै जै के चलते ओ 21 दिन से पहिने ही ओ फिर जाइ गेल। दोसर कारण होइ छै कि ओकरा बजदानी में कोनो तरह के इन्फेक्शन छै, जै के चलते जखने ओ सीमेन गेलै अंदर में ओकर स्पर्म ई भेलै फर्टिलाइज भेलै कि ओ की करै छै, ओ कीड़ा ओकरा पर अटैक कऽ देलक आ ओकरा मारि देलक ओकरा अंदर में, ओहू से ओ बेसी बार बार ई होइ छै। तऽ पहिल के इलाज भेलै जे ओकरा अहाँ विटामिन ए

0: ई सब और ओकर हार्मोन किछु अबै छै ब्रुसेलिन ग्रुप के, ओ अहाँ 2.5 ml पाल खाएसँ पहिने दियौ, 2.5 ml पाल खाके 6ठा दिन दियौ, आ ओकरा मिनरल विटामिन सब मेंटेन करियौ 21 दिन तक। दोसर भेलै जे इन्फेक्शनसँ होइ छै ओकरा अहाँ बसदानीके लुगलसँ पोटाससँ 3 दिन कमसँ कम साफ कराकऽ, बसदानीमे यूनिमाइसिन, जेंटामाइसिन, कासिन ईसब एंटीबायोटिकके 3 दिन दियौ, सङ्गहि विटामिन ए के इंजेक्शन ओकरा दियौ मसलमे, ताकि ओकर यूट्रस नॉर्मल हैत, आओर एक आध मास रेस्ट लेलाके बाद ओकरा पाल खुअबियौ ताकि ओ पाल रहि जाए ठीकसँ।
1: डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा जी, अपने मालजालमे जे संक्रामक रोग सब होइए ओकर लक्षण आ सामान्य उपचारके सम्बन्धमे पशुपालक भाइ लोकनिके खूब सुन्दर आ नीक जानकारी देलियनि, ताहि लेल अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनिल जी, सङ्गहि सब श्रोतागणके।
2: हँ, अखन हमरा लोकनि सुनै छलहुँ भेंटवार्ता। भेंटवार्ताके विषय छल पशुओके संक्रामक रोग एवं बचावके उपाय। भेंटवार्ताकार छलथि डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा, हिनकासँ गप कऽ रहल छलथि।

0: आ नीक जानकारी देलियनि, ताहि लेल अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अनिल जी, संगे सब श्रोतागण के।
2: हाँ, अखन हमरा लोकन सुनै छलौं भेंट वार्ता। भेंट वार्ता के विषय छल पशुओं के संक्रामक रोग एवं बचाव के उपाय। भेंट वार्ताकार छलै था डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा, इनका से गप कर रहल छलै था अनिल कुमार कर्ण, प्रस्तुति छलै ना असद दाऊद के।
3: तो दुनू गोटा के बीच भेली गप सब सुनलौ, आब हमरा लोकन सुनै छी ई लोकगीत। तो सुनल जाए अरविंद कुमार झा के गाओल।
2: सुनल जाए।

0: अखन अरविंद कुमार झा के गाली गीत सुने चल फसल गीत छल आब
1: सतो भाई हमरा लोकन गीतो नाद तखने निक लगैत अछि जखन कि पशुधन स्वस्थ रहैत अछि आ ताहि लेल जे संक्रामक बीमारी ओहि सबसँ एकरा बचेबाक चाही आ इहो ध्यान रहे जे संक्रामक बीमारी पसरै वाला बीमारी के कहल जाइत अछि तैं जो पशु के भऽ जाय तऽ ओहिसँ हमरा लोकनि के बचेबाक लेल ओकर जे उचित उपचार ओ करबाक चाही आ संक्रामक बीमारी नहि हुए ताहि लेल टीकाकरण करेबाक चाही बीमारी होइसँ पहिने तऽ एहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थीक बेर सम्पन्न भऽ रहल अछि तऽ स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लै छियनि।
0: नमस्कार उगना भाई।
1: नमस्कार सत्तो भाई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर, और इसी के अंतर्गत आपने सुना खेती गृहस्थी भी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में पटना केंद्र से आप सुनेंगे।

0: आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञान।

0: बालपन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री। सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होगी मैथिली भाषा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक। राज्य सरकार ने कहा, मध्य एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: वहीं डोमकच्छ लोक नृत्य परंपरा को मुख्य धारा में लाने वाले पुरोधा विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी इंदु देवी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्मश्री श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक

0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा एक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया गया है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। श्री ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है।
1: सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल किया जाना एवं सीटेट सीटीईटी में भी मैथिली भाषा को स्थान मिलना संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और मिथिला की अस्मिता, संस्कृति और मातृभाषा का जो सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यह काम किया है ऐतिहासिक, इसके लिए हम मिथिला वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई आभार प्रकट करना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मैथिली को सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के रूप में मान्यता देने की केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह गौरव का विषय है। इससे मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के इस फैसले से मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता को और भाषाई गौरव बढ़ेगा। इधर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद और बधाई दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बनाने के मुद्दे पर विचार किया गया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले दो सप्ताह में तेल के मूल्य में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपए और डीजल 99.36 रुपए प्रति लीटर हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सभी को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है। इसका प्रभाव ईंधन की कीमतों पर पड़ा है।
2: जितना बड़ा संकट है, जितना बढ़ना चाहिए उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम कम बढ़ा रही है। बहुत कम कम रुपयों का इजाफा दाम में हो रहा है और पूरी दुनिया झेल रही है। कोई अकेले भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम थोड़े बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। खाड़ी का संकट, हॉर्मुज संकट सब लोग जान रहे हैं।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा।
3: वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पेट्रोल डीजल के खपत को घटाने तथा सार्वजनिक वाहनों को उपयोग बढ़ावा देने के आह्वान के मद्देनजर बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवासीय स्थानों से कार्यालय आगमन हेतु एम्स पटना से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिकल, एक सीएनजी एवं एक पिंक बस, सगुना मोड से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक बस, धनकी मोड से बिहार विधानसभा मंडल निर्वाचन आयोग एवं विकास भवन रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक एवं एक सीएनजी एवं एक पिंक बस का परिचालन आज शुरू किया गया है।
0: बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ की ओर से पटना में एक दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 कंपनियों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद रहे। श्री यादव ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए किसानों का सशक्त होना जरूरी है।
4: तिरहुत यूनियन के साथ 3 कंपनियां हैं जिसके साथ एमयू हुआ है, जिसमें एचयूडी है, नेचर फास्ट है, हरिलाल है, मंडी मित्र और सेजा फूड है। तो ये सब

0: के साथ हमारा एमयू हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे काफी फायदा होने वाला है। हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को प्रोत्साहित करके, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, कि सरकार हर तरह का सपोर्ट देने की प्रतिबद्धता रखती है।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर रहे जायरीन मिना के टेंट सिटी में आज रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां वे हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस वर्ष हज यात्रा में बिहार के 2,552 हज यात्री समेत देश भर के लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
4: दिनांक 26 मई राज्य के अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया और रोहतास जिले में हॉट डे की स्थिति बनी रही। रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के दक्षिणी भागों में गर्मी से राहत के आसार अभी नहीं हैं। भीषण गर्मी के कारण मुंगेर जिले के संग्रामपुर में +2 बालिका विद्यालय की 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। बीमार छात्राओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SS राय ने बताया कि लू लगने के कारण छात्राएं बेहोश हो गईं, अब उनकी हालत में सुधार है। पटना के ज्ञान भवन में आज 3 दिवसीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आयोजित इस मेले का उद्घाटन विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। 27 मई तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन 13,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें 1876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के द्वारा चयन किया गया है। गोपालगंज की MP MLA कोर्ट ने अश्लील नृत्य और हथियार लहराने से जुड़े मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

0: गौरतलब है कि गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमराव गांव में 2 और 3 मई को एक कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह की मौजूदगी में समर्थकों के अश्लील गीतों पर हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। निगरानी विभाग की टीम ने बेगूसराय के सहायक नियंत्रण नापतौल कार्यालय में कार्यरत लिपिक पुष्कर कुमार द्विवेदी को 5,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी नापतौल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उन्होंने बताया कि आगे की पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले में बकरीद पर्व को लेकर अनुमंडल और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही समाजसेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए। वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन फरार वारंटी अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। शेखपुरा जिले में डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण के इनरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के करीब एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस संबंध में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। नवादा के पुलिस केंद्र के पास गया नवादा रोड पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 वाहन के चालक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री। सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होगी मैथिली भाषा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक। राज्य सरकार ने कहा मध्य एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और मौसम विभाग ने सुपौल अररिया किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
7: नालंदा जिले में धर्म आस्था और अध्यात्म के अद्भुत संगम के बीच ऐतिहासिक राजकीय मालमास मेला का भव्य शुभारंभ हो गया है। 17 मई की सुबह धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद, मंगल आरती और ध्वजारोहण के साथ मेले की शुरुआत हुई। यह मेला 17 मई से 15 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फीता काटकर इस राजकीय मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही संपूर्ण राजगीर क्षेत्र हर हर महादेव ब्रह्म बाबा

0: बाबा की जय, जय श्री राम और राजगृह धाम की जय के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। मेले के पहले ही दिन ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और तपोवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे मेला क्षेत्र को आकर्षक रोशनी, धार्मिक झांकियों और रंग बिरंगी सजावट से विशेष रूप से सवारा गया है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आवासन, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, पेयजल और स्वच्छता की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर की पावन बदियों में शुरू हुआ यह ऐतिहासिक मेला एक माह तक श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का मुख्य केंद्र बना रहेगा। जीविका दीदियों के आर्थिक उत्थान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने राजगीर मलमास मेला क्षेत्र में 25 चिन्हित स्थानों पर जीविका दीदी की रसोई स्थापित की है। इस पहल से बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इस रसोई में श्रद्धालुओं को मात्र 35 रुपये प्रति प्लेट की दर से शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जहां रहने, पेयजल, शौचालय, बिजली और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं रेलवे ने मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए राजगीर से हावड़ा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। नालंदा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर 19 मई को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा द्वारा परिसर में कौटिल्य सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। विश्वामित्रालय सभागार में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने नालंदा को एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि सभ्यतागत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती ज्ञान को विवेक और करुणा से जोड़ना है। इस समारोह में वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सहित 14 देशों के 219 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। जिले में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य अब अंतिम चरण में है। प्रशासन ने 31 मई तक मकानों की सूचीबद्धता का लक्ष्य रखा है। जिले में कुल 5,493 परगणक तैनात हैं, जिनमें से 5,287 ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जिले में अपेक्षित 8,08,100 मकानों में से अब तक 8,01,952 मकानों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक 38,38,755 आबादी और 6,58,874 परिवारों का डेटा दर्ज किया जा चुका है। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 10 दिनों से जारी प्रचंड लू और गर्मी से आम जीवन व्यस्त हो गया है। जिले का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बिजली खपत 300 मेगावाट से बढ़कर 385 मेगावाट तक पहुंच गई है। लगातार बिजली की कटौती से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए 352 बिजली मिस्त्री 3 शिफ्टों में 24 घंटे मरम्मत कार्य में जुटे हैं। विभाग ने कई संवेदनशील जगहों पर बड़े क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने का भी काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास सह सूचना और जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने विगत 23 मई को आपदा पीड़ितों परिवारों से मुलाकात की और उनके बीच 4,75,000 रूपए की राहत राशि के चेक वितरित किए। बिहार ग्रामीण बैंक ने अपने ग्राहकों से प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं को जारी रखने के लिए अपील की है। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विपुल सौरभ ने बताया कि जिन खाता धारकों ने वर्ष 2025-26 में इन योजनाओं के तहत पॉलिसी ली थी, वे 31 मई 2026 तक अपने खाते में पर्याप्त राशि जरूर रखें। राशि न होने पर पॉलिसी स्वतः समाप्त हो जाएगी। बैंक द्वारा 18 मई से 31 मई 2026 के बीच प्रीमियम राशि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 436 रूपए और सुरक्षा बीमा योजना के लिए 20 रूपए ऑटो डेबिट की जाएगी। नई वैधता अवधि 1 जून 26 से 31 मई 2027 तक प्रभावी रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। इसके अंतर्गत हमने पहला गाना लिया है फिल्म खूबसूरत से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और कविता।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिंदूर से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म चाइना टाउन से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी। मजरूह के लिखे गीत को संगीत दिया है रवि ने।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चाइना टाउन का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अलावे हमें आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं मैथिली में हमारा संबोधित कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंक में अपने सभक स्वागत है। आई अपने सभक संग हम छी राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकनि, अपना सब ओहिठाम गर्मी अखन अपन चरम पर है। भरि दिनक तिक्ख रौद सबके फिरिसान केने है। ग्लोबल वार्मिंग केर जे असरि ओ हमरा लोकनि अपना ओहिठाम सद्यह देखि रहल छी, ओकर अनुभूति कऽ रहल छी। प्रकृति केर ई रूप हमर सभक स्वास्थ्य के तऽ प्रभावित करते अछि, संगहि हमर सभक दैनिक काज सब सेहो बाधित भऽ जाइत अछि। तैं एहन समय में आवश्यक भऽ जाइ छै जे हमरा लोकनि अपन स्वास्थ्य के देखैत अपन काज सब में लागल रही, अपन दायित्व सभक निर्वहन सेहो आवश्यक होइत छैक, तैं अपन स्वास्थ्य के देखैत एहिमे लागल रहब आवश्यक होइत अछि। बंधु लोकनि, हम सब अपन कर्तव्यक निर्वहन में सदति लागल रहै छी आ तैं विकासक बाट पर आगा बढ़बाक कल्पनो करै छी हमरा लोकनि। ओना अपन कार्यक्रम में सेहो हम सब कनेक आगा बढ़ै छी। औने महाकवि विद्यापतिक ई गीत रचना सुनै छी।

0: निश्चित रूपसँ ओकर संरक्षण संवर्धनमे लागल रहैत छी। ओना हमरा सभक मैथिली साहित्य आइ जतय अछि ओहि लेल बहुतो गोटाक परिश्रम छनि। हमर सभक कर्तव्य बनैत अछि जे मैथिलीक संवर्धनमे योगदान देनिहार ओहि प्रत्येक मनीषी लोकनिकेँ स्मरण करैत रही। श्रोता बंधु, मैथिली साहित्यक संवर्धनमे योगदान देनिहार दू गोट मनीषी लोकनिक काल्हि पुण्यतिथि छलनि। हाँ बंधु लोकनि, हम गप कऽ रहल छी उपेन्द्र ठाकुर मोहन आ कुलानंद मिश्र केर। उपेन्द्र ठाकुर मोहन वृत्तिसँ पत्रकार छलाह, मुदा हुनक हृदयमे जे विपुल भावना संचित छल से काव्य कृति सभक माध्यमे छंदक रूपमे निरंतर प्रवाहित होइत रहल। बड़ौदा राजक राजकीय विद्वत परीक्षासँ साहित्य रत्नक उपाधिसँ अलंकृत छलाह उपेन्द्र ठाकुर मोहन। हुनक तीन गोट कविता संग्रह प्रकाशित छनि, फुलडाली, बज उठल मुरली आ इतिश्री, जे हिनक देहांतक पश्चात 1982 प्रकाशित भेल। बज उठल मुरली लेल पंडित उपेन्द्र ठाकुर मोहनकेँ 1978 केर साहित्य अकादमी पुरस्कारसँ सम्मानित कयल गेल छलनि। बाजि उठल मुरली हिनक आरम्भसँ लऽ कऽ वर्तमान धरिक 101 कविताक संकलन अछि। बंधु लोकनि, पहिने कहलहुँ 24 मई 1980 हिनक निधन दरभंगामे भऽ गेल छलनि। तहिना 24 मई मैथिलीक एक गोट आओर साधकक निधन भेल छलनि। हम गप कऽ रहल छी कुलानंद मिश्रक, जिनक निधन 24 मई 2001 पटनामे भेल छलनि। नव तेवर केर कवि, प्रख्यात आलोचक, कुशल संपादक, उज्जीवंत अनुवादक कुलानंद मिश्रक मूल नाम छलनि बहाल चंद्र मिश्र। घर छलनि सीतामढ़ी जिलाक पकड़ी कोठी। हिनक पहिल कविता संग्रह छल ताबत एतबे, फेर सुकांत सोमक संग संयुक्त कविता संग्रह अयलनि भोरक प्रतीक्षा में। एकर बाद आब आगा सुनू, आओ किछु गप करी आ उना कहबा लेल बहुत किछु छल हमरा लग प्रकाशित भेलनि। हिनक समीक्षाक पोथी बदलैत सौंदर्य बोध आ कविता सेहो 2004 प्रकाशित भेलनि। हिनक दू गोट अनुवादक पोथी सेहो प्रकाशित छलनि। बंधु लोकनि, कवि योग काव्यक पोथी सभक एते रास चर्च केलहुँ तऽ आउ ने पहिने ई काव्य पाठ सुनि लै छी हमरा लोकनि। कवि छथि हरिश्चंद्र हरित।
1: नवका कलमक सुपक सिनुरिया, गाछी केर ओ केरबी गोपिया, गुणसारिक ओ फजली चोरबी, पछिमा बाधक ओ करपुरिया, बुढ़िया बोनक सोन लरुब्बा, संग सपेता आम तकै छी, कनिया काकी केर बाड़ी केर ओ डमहोर लताम तकै छी, गाम हेरा गेल गाम तकै छी। नबका कलमक सुपक सिनुरिया, गाछी के ओ केरबी गोपिया, गुणसारिक ओ फजली चोरबी, पछिमा बाधक ओ करपुरिया, बुढ़िया बोनक सोन लरुब्बा, संग सपेता आम तकै छी, कनिया काकी केर बाड़ी केर ओ डमहोर लताम तकै छी, गाम हेरा गेल गाम तकै छी। गमहारिक सुखैल बीया सौ सतघारा केर घर सजाबी, चिक्कन गोल घसल डिग्गा सौ एकट दुक्कट राज लगाबी, सौंसे गामक अंगना अपने चोरा नुक्की झात बजाबी, बुढ़िया चेत कबड्डी ताली कीत कीत में की नहीं पाबी, गुल्ली डंटा गिद्धा गुड़कन टन्ना दुखी अटकन मटकन, चोर सिपाही घोघो रानी आनी मानी हमने जानी। गमहारिक सुखैल

सम्वेद स्वरमे एखन हमरा लोकनि महाकवि विद्यापतिक ई गीत रचना सुन रहल छलहुँ। बंधु लोकनि, हमसब संसार रूपी एहि रंगमंच पर नाटकक पात्र सदृश अपन अपन चरित्रक निर्वहन करैत रहैत छी। सब गोटेक अपन अपन उत्तरदायित्व रहैत अछि आ सभक अपन अपन परिस्थिति सेहो, मुदा हमरा लोकनि अपन ओहि परिस्थिति सभक संग चलैत अपन लक्ष्यकेँ प्राप्त करबाक प्रयासमे लागल रहैत छी। हाँ, एहि सभक संग एकटा आओर गप महत्वपूर्ण रहैत अछि, ओ अछि अपन सभक परिवार, अपन सभक समाज, ओ अपन सभक जे साहित्य अछि ओकरा प्रति हमरा लोकनिक कर्तव्य। हमरा लोकनि अपन ओहि व्यस्त समय सभमेसँ किछु क्षण एहन निकालैत छी जाहिमे हमसब अपनासँ फराक अपन साहित्य, संस्कृति, ओ परम्परा सभ लेल किछु कऽ सकी। बंधु लोकनि, मैथिली भाषी हेबाक कारणे मैथिलीक प्रति किछु कर्तव्य अछि हमरा सभक, तैँ एकरा ध्यानमे राखि हमसब

भी यासो सतघारा केर घोर सजा भी चिक्कन गोल घसल डिग्गासो एककठ दुक्कठ राज लगा भी सौसे गामक अंगना अपने चोरा नुक्की झात बजा भी बुढ़िया चेत कबड्डी ताली कीत कीत में की नहीं पाबी गुल्ली डंटा गिद्धा गुड़कन टन्ना दुखी अटकन मटकन चोर सिपाही घोघो रानी आनी मानी हमने जानी आस पास में ताकी ककड़ा सेने कोनो नाम पवे छी मन आंगन में लाल पड़ी संकरिया झुमर नाच करे छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी नानी हाथक लड्डू मठरी कमला का तक झिल्ली कचरी रूसी तो भेटै बस कुनमा तैले आंचर दौड़ा पकड़ी लाल कका केर कन्हा झूली दादा केर पीठे पर भूली भुआ चोरक नामी खिस्सा मैया कोड़ा हमरे हिस्सा नानी हाथक लड्डू मठरी कमला कातक झिल्ली कचरी रूसी तो भेटै बस कुनमा तैले आंचर दौड़ा पकड़ी लाल कका केर कन्हा झूली दादा केर पीठे पर बूली भुआ चोरक नामी खिस्सा मैया कोड़ा हमरे हिस्सा खर्रख बाली खवासनी केर कोड़ा में सुखधाम तकै छी खर्रख बाली खवासनी केर कोड़ा में सुखधाम तकै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी गढ़हन खात सबैया हुट्ठा मुगली बान्हल गेलै सुट्टा काल्हि सुनायब सत्य कहै छी सब दिन मुदा बनै छल झुट्ठा घोड़न केर छत्ता झड़ैत छल तै पर सौ छौकी पड़ैत छल गढ़हन खात सबैया हुट्ठा मुगली बान्हल गेलै सुट्टा काल्हि सुनायब सत्य कहै छी सब दिन मुदा बनै छल झुट्ठा घोड़न केर छत्ता झड़ैत छल तै पर सौ छौकी पड़ैत छल ओइ कर वीरक दुखमोचन केर आइयो तो हम नाम जपै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी बाँसक सुपती उक्का लोली आंगन आंगन रचै रंगोली टोल टोल सँ निकलै टोली गाबै मस्त मजीरा भोली एहन मचै समगर्दा होली की बलचनमा की बम भोली लालन बाबू केर ललकारा दिल्ली लालक सारा रारा ढोलक बानि फनै छल जनका नाचै बच्चा बूढ़ जुअनका बाँसक सुपती उक्का लोली आंगन आंगन रचै रंगोली टोल टोल सँ निकलै टोली गाबै मस्त मजीरा भोली एहन मचै समगर्दा होली की बलचनमा की बम भोली लालन बाबू केर ललकारा दिल्ली लालक सारा रारा ढोलक बानि फनै छल जनका नाचै बच्चा बूढ़ जुअनका जूड़ शीतलक घोल फचक्का आंगन आंगन ढोल फुचुक्का बनै महादेव भुखना ताती भूत प्रेत सन सजै बराती सुखराती में माल जाल केर गड़ा लाल गरदाम तकै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी ढुनमुन काकी केर आपकता गीता मौसी केर व्यापकता सगरे टोल पड़ोसक चिंता ककरा पड़लै कोन बेगरता विध व्यवहारक हींग हरदि सँ गीत नाद केर ओ वित्तपनता अरिपन पुरहरि ओरियानक संग बच्चा बूढ़ बेमारक तलता ढुनमुन काकी केर आपकता गीता मौसी केर व्यापकता सगरे टोल पड़ोसक चिंता ककरा पड़लै कोन बेगरता विध व्यवहारक हींग हरदि सँ गीत नाद केर ओ वित्तपनता अरिपन पुरहरि ओरियानक संग बच्चा बूढ़ बेमारक तलता गुलबी मैसन फुर्ती बाली गुलबी मैसन फुर्ती बाली आब न कोनो ठाम पबै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी उत्तर ताकी गौरी शंकर पश्चिम ताकी बाबा बटेश्वर पूब बसल संसार नाथ छथि बीच घेरायल बाबा भैरव उत्तर ताकी गौरी शंकर पश्चिम ताकी बाबा बटेश्वर पूब बसल संसार नाथ छथि बीच घेरायल बाबा भैरव राम जानकी केर सेवा में दक्षिण पवन पुत्र छथि तत्पर अपने गामक डीह टोल सँ हम तो अपने ही गाम तकै छी अपने गामक डीह टोल सँ हम तो अपने ही गाम तकै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी कतौ कतौ कत्ते की ताकब हम तो झूर झमान झखै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी गाम हेरा गेल गाम तकै छी समष्टिक चिंता में हमर कविता कविता
কোনো ঘ

0: टाही साड़ी नहीं थी, जे पेटी में बंद भेल पावनिये तिहार कोनो कोमलांगिक शोभा बनैछ। कविता तो गोबर पथैत, जात पिसैत, चूल्हि लग आँच फुकैत, घमैल देह सँ सटल कोनो ताँत थीक, जे तन्नुक संवेदना के झपने कोनो काजुल नायिकाक सब काल संग पुरैछ थीक हमर कविता। कविता कोनो घोक टाही साड़ी नहीं थी, जे पेटी में बंद भेल पावनिये तिहार कोनो कोमलांगिक शोभा बनैछ। कविता तो गोबर पथैत, जात पिसैत, चूल्हि लग आँच फुकैत, घमैल देह सँ सटल कोनो ताँत थीक, जे तन्नुक संवेदना के झपने कोनो काजुल नायिकाक सब काल संग पुरैछ थीक हमर कविता। कविता कोनो तितली सन सजि धैज, फूले फूल बौआछि नहि, एकेटा कमल में बन्न भेल नवका बिहान केर बाट तकैत भमरा थीक हमर कविता। धनरोपनी करैत चूड़ीक संग खनकैए हमर कविता, घास छिलैत, जारनि तोड़ैत, साड़ूह कोड़ैत, हेजक रंग उमकी में रमकैए हमर कविता, ईटा उघैत देहक घाम संग गमकैए हमर कविता। धनरोपनी करैत चूड़ीक संग खनकैए हमर कविता, घास छिलैत, जारनि तोड़ैत, साड़ूह कोड़ैत, हेजक रंग उमकी में रमकैए हमर कविता, ईटा उघैत देहक घाम संग गमकैए हमर कविता, दम्भ सँ भरल कोनो माननीक मान नहि थिक हमर कविता। भोरे उठि घर आँगन नीप, इसकुल आ काज परत जलखै रखैत, साँझखन ऑफिस कारखाना सँ झामर देह आ पितैल मोने अबैत पति स्वागत में ठाढ़, पत्नीक ठोर पर मधुरिम मुस्कान थीक हमर कविता। भोरे उठि घर आँगन नीप, इसकुल आ काज पर जलखै रखै, साँझखन ऑफिस कारखाना सँ झामर देह आ पितैल मोने अबैत पतिक स्वागत में ठाढ़, पत्नीक ठोर पर मधुरिम मुस्कान थीक हमर कविता। दम्भ सँ भरल कोनो माननीक मान नहि थीक हमर कविता। दम्भ सँ भरल कोनो माननीक मान नहि थीक हमर कविता। पाजर बकुटने पराइत बेसोह, जीवल लोक दिल्ली पंजाब में अतरि दुहबैत, सपनाइत मुदा आँखिमे वर्तमानक छापन, भविष्यक सिलेट आ अतीत केर च्यवनप्राश थीक हमर कविता। पाजर बकुटने पराइत बेसोह, जीवल लोक दिल्ली पंजाब में अतरि दुहबैत, सपनाइत मुदा आँखिमे वर्तमानक झापन, भविष्यक सिलेट आ अतीत केर च्यवनप्राश थीक हमर कविता। अंतिम सबटा वाद आ विवाद के धकियबैत एकात, मत अभिमत के करैत आत्मसात, समष्टिक चिंतन में षटताले शेषनाग, जड़ताले अग्निज्वाल, कटताले कालकूट, ममता केर मधुर गीत मीत हमर कविता। सबटा वाद विवाद के धकियबैत एकात, मत अभिमत के करैत आत्मसात, समष्टिक चिंतन में षटताले शेषनाग, जड़ताले अग्निज्वाल, कटताले कालकूट, ममता कर मधुर गीत मीत हमर कविता। ममता कर मधुर गीत मीत हमर कविता।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: बंधु लोकन, यही संदेश से पहले हमरा लोकन हरिश्चंद्र हरित के

किछु काव्य पाठ सुनि रहल छलहुँ। आ देखू ने, आब हमरा लोकनिकेँ शब्द विमर्श दिस सेहो चलबाक अछि, मुदा की विचार, पहिने एगोट गीत सुनल जाए। आउ ने, पहिने ई गीत सुनि लै छी सुषमा कुमारीक स्वरमे, फेर हमरा लोकनि गप करब।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली में हमारा संबोधित कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अलावे हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब हम सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में

0: ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी पलाना स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: Against the assessment of
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor, late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
3: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
2: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
4: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry.

0: heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Uttarakhand till tomorrow. The IMD has also predicted hot and humid weather over Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Bihar, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, North Interior Karnataka and Northeastern region tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In the 57 kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelaman Amangal Diev 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97 kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzad Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी मेहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरक कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैम्पियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज्रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड

0: दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली 3 चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो

0: और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली तीन चीज़ों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत को उजागर किया है। ये तीन चीज़ें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और ज़र मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्ज़ों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मज़ाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतल बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीदकारी के काम को तेज़ रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्देअमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज़ किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिल कार के निज़ाम में तकनीकी खराबी के बाद ये कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुँच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाज़ों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज़, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किए हैं जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबरा के राधाकृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाए। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को NEET UG 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से ये भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैन अवी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां ज़िलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज़ दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए, जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक مطابق اب تک

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों, खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70 पॉइंट, औसतम 70.3।

0: इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
1: ऐसे जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन्स के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से।
0: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर।
1: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी,
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
1: जी,
0: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी,
1: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है, कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते
1: जी,
2: उनको
1: जी,
2: तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी जी। धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है
1: जी। थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे

0: के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को, किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है।
1: जी, थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
0: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चनों का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
1: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनाच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूँगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं, वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का दे के, परिचय पत्र दे के ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है।
0: जी, और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
1: जी, संजय
0: सूरी
1: सूरी
0: जी,
1: जी और गोपाल
0: पाल सोनी जी,
1: सोनी जी,
0: जी
1: आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद जोग्राफिकल लोकेशन, नाम, पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारी जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
0: और संजय सुरुचि का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी,
1: जी, इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी।
0: ताकि लोगों को आसानी हो।
1: जी,
0: जो
1: संजीवनी,
0: संजय सूरी जी,
1: संजय सूरी
0: सूरी
1: जी,
0: जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल रहा। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक, जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल नहीं सकते हैं, उन तक तो हम लोग

0: से पहुंच सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
2: जी अमित उपाध्याय जी सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मुनाली जी अगर देखूं, जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
2: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
2: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
2: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो
1: हेलो
3: हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट भी कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
2: श्रीपाद जी आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
2: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुँच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर

0: विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
1: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए,
0: जी
1: तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
0: जी जी तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
2: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी धन्यवाद
2: जी। और जी मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
1: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पर भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
0: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
1: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
0: जी
1: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
0: जी हाँ, जैसे हमने जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर हम जाएँ दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है, तो उधर भी उपलब्ध होगी जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
1: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
0: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
3: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
0: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
0: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
1: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन

0: इन है और 112 इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स है उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्री वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
2: नमस्कार,
1: आपका सवाल।
2: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने
1: जी, राजेश नेमा जी।
3: जी
1: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी,
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी थैंक यू इस सवाल के लिए, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इसी से हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीज़ें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये

0: चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे।
1: जी।
0: तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनने का। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: भैया
0: आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बारकपुर दिल्ली से बोल रहे भैया, गांव
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: कोठरना जिला दरभंगा वाले।
0: अच्छा अच्छा तो क्या कहिएगा, आपके इधर अभी मौसम कैसा है?
1: नहीं, मौसम तो गर्मी है, बारिश हुई सही नहीं हुई।
0: अभी कुछ बादल लगे हुए थे, ऐसा कुछ अनुमान था।
1: हाँ तो था, लेकिन थोड़ा हवा आया, लेकिन सुरक्षित है।
0: चलिए चलिए, आप रेडियो सुनते हैं, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी, हम तो कोई ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का चैनल है कि हम सुन रखे हैं। पुराने
0: चलिए बहुत अच्छा,
1: फिल्म के हम बहुत मशहूर हैं, और वो
0: चलिए
1: भी
0: चलिए।
1: फिल्मदा साहब की है फिल्म मिलन फिल्म, समझ
0: अच्छा
1: गए।
0: अच्छा जी जी
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: शौक का
0: बिल्कुल
1: गाना है उसमें।
0: जी, आपने सुनील दत्त साहब को याद किया, और वाकई
1: जी,
0: आज उनकी पुण्यतिथि है।
1: और
0: और
1: बहुत
0: जी, तो आपने फरमाइश किया
1: हाँ
0: है मिलन फिल्म का, तो आइए आपकी
1: मिलन
0: फरमाइश
1: फिल्म
0: पर।
1: का। जी
0: बिल्कुल जी, आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: नहीं बोल क्या रहे हैं, वो तो सुनील दत्त साहब तो थे ही, बहुत जो है माने हुए हीरो थे। अब
0: जी जी
1: कहाँ है वो, तो दो एक बच गए हैं, उन लोगों का भी तो हाथ पैर ही उल गए हैं,
0: जी जी
1: बाकी तो दो ही बच गए हैं, दो ही थे बाकी
0: ठीक है, तो आइए
1: तो।
0: आइए आपके फरमाइश पर हम सभी मिलकर सुनील दत्त साहब पर फिल्माए मिलन फिल्म का ये गीत
1: जी
0: सुनते हैं।
1: जी जी
0: जी।

0: अभी और लाइन पर हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर और हैं, हाँ, हम इनसे बातचीत करते हैं। कहिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: हम दरभंगा से बोल रहे हैं, तो सैयद अंसारी साहब बोल रहे हैं।
0: कहिए, क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है सर। आप लोग अपना बताइए, और आपकी जितनी टीम है सबको हमारा शुभकामनाएं, और सबको अल्लाह ताला उम्र का बड़ा करे। जितनी अच्छी आवाज अल्लाह ने दिया है आप सबको,
0: जी जी जी,
1: और इसी तरह हम लोग को
0: बिल्कुल, और आप
1: सुनने को मिलता रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप जो हमारे श्रोता होते हैं वो हम लोगों के एक तरह से समझिए कि आईना का काम आप लोग करते हैं, और ये प्यार और ये स्नेह ऐसे ही बनी रहे। और ये है कि आज आपके क्या फरमाइश हैं, कौन से गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: हम वक्त फिल्म का गाना सुनेंगे, ऐ मेरी जोहरा जब भी तू अभी तक हंसी, तुझे मालूम नहीं अभी तक हंसी और मैं गवा।
0: जी बिल्कुल, मन्ना डे साहब इस गीत को गाए हुए हैं।
1: जी मन्ना डे साहब गाए हुए हैं।
0: और इस फिल्म में सुनील दल साहब भी हैं।
1: जी, राजकुमार भी है।
0: हाँ बिल्कुल, और आपको बता दें कि आज सुनील दत्त साहब की पुण्यतिथि भी है।
1: जी जी जी जी, इस फिल्म को याद किए हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही याद किया। और ऐसे जिन्हें कि मुझे जीने दो और खानदान फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।
1: जी जी जी, वो भी फिल्म देखे हैं, और इंशाल्लाह उस खानदान फिल्म का भी गाना सुनेंगे आपसे।
0: जी बिल्कुल, आज आपकी फरमाइश वक्त फिल्म से है। बिल्कुल, तो आइए आपकी फरमाइश पर। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी फरमाइश पर
1: सर, एक और सुन लीजिए, फिर से आप लोग को अल्लाह ताला की तरफ से दुआ कर रहा हूँ कि आप लोग को अल्लाह ताला सेहत दे, और इसी तरह उम्र का बड़ा करे, और हम लोग के बीच आप जी तरह सुनाते रहे।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए आपकी फरमाइश पर वक्त फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में सुनते हैं।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: जी
0: आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: सर, मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं एक शिक्षक हूँ खानपुर प्रखंड से तिरुपति ग्राम।
0: अच्छा, तो ये खानपुर समस्तीपुर से?
1: जी जी
0: ओ
1: हीरालाल गुप्ता का क्लिनिक ना, डॉक्टर सुरत लाल
0: जी,
1: गुप्ता,
0: बिल्कुल। तो
1: वो बहुत
0: आपके
1: चलता है।
0: बिल्कुल आपके तरफ का आपके तरफ के मौसम कैसे हैं?
1: मौसम का सर थोड़ा हवा हवा चल रहा है, आंधी तूफान आया था, लेकिन है ठंडा है।
0: अच्छा, कुछ कुछ राहत मिली है?
1: जी जी सर,
0: जी जी
1: गर्मी से है
0: आकाशवाणी
1: राहत।
0: जी जी आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: हम सर है ना हेलो दरभंगा, क्योंकि अभी स्कूल है हमारा मॉर्निंग है तो
0: जी
1: सुन नहीं
0: जी
1: पाते, लेकिन हेलो दरभंगा है ना, शुक्रवार सोमवार हम नहीं छोड़ते हैं, चाहे फोन लगे या नहीं लगे, लेकिन ये प्रोग्राम हम नहीं छोड़ते हैं सर।
0: वाह वाह वाह, आप हमारे बिल्कुल ही समर्पित श्रोता हैं।
1: जी सर, हमारा बहुत बार कॉल लग चुका है, लेकिन इस बार कॉल हमारा बहुत दिन के बाद लगा है।
0: अच्छा, चलिए, ये तो सब ऊपर वाले की, इसलिए कि ऐसा है कि इसमें कि एक बार में बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो
1: जी सर
0: सभी का
1: जी,
0: जी
1: हमारा
0: जी
1: कॉल लगे या नहीं लगे सर, लेकिन हम 10 से 11 पूरा गाना सुन के
0: बिल्कुल
1: ही छोड़ते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: यही डिवोशन होना चाहिए और एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। अपने श्रोताओं को हम
1: बिल्कुल
0: आप ही के बहाने बताते चलें कि हमारा जो मोबाइल नंबर है जिस पर आप आज फरमाइश करेंगे, 9430029353। तो कहिए, आपकी क्या फरमाइश है, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? हेलो हेलो,
1: हमराज फिल्म का गाना है सर, सुनील दत्त साहब का,
0: अच्छा
1: नमो
0: हमराज,
1: छुपा के जियो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, हम सभी मिलकर आज सुनील दत्त साहब को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो चलिए, आप ही के बहाने, आपके फरमाइश पर हम सभी मिलकर हमराज फिल्म का ये गाना, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, इस गीत को सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में।
1: जी सर,
0: जी जी

0: खानदान फिल्म का गाना। खानदान फिल्म के बहुत सारे गीत हैं और सारे के सारे गीत एक से एक हैं, और मुख्य रूप से आज हम सुनील दत्त साहब को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। जी
1: जी भाई, अभी आगरा वाला गाना चल रहा था ना, तो आप बोले।
0: जी जी बिल्कुल,
1: मनुआ की
0: इस फिल्म से कोई, तो इस खानदान फिल्म से कोई एक गीत आप सुनना चाहेंगे, है ना?
1: हाँ, कोई
0: तो बिल्कुल, तो आपकी जी बिल्कुल, तो आपकी जी जी आपकी फरमाइश पर हम नील गगन पर उड़ते बादल इस गीत को आइए हम सभी मिलके सुनते हैं। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है भैया।

0: हेलो आकाशवाणी जी। हेलो,
1: हेलो भैया, आदाब भैया। हम मेरा
0: नमस्कार नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: से दिलदारगंज से महाराजगंज के बगल से दिलदारगंज
0: जी, कहिए कैसे हैं, क्या
1: नाम
0: हाल चाल है?
1: मोहम्मद मोहम्मद इस्लाम दिलदारगंज। ठीक
0: जी बिल्कुल, कैसे हैं, क्या हाल चाल है?
1: है भैया, तो
0: बिल्कुल वाह।
1: भैया तो
0: और आज हेलो आकाशवाणी इस कार्यक्रम में आपने क्या सोचा है, कौन से गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: खानदान फिल्म का गाना।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: दरभंगा बिहार से मोहम्मद कलीम दीवाना बोल रहा था।
0: मोहम्मद कलीम दीवाना जी, कहिए क्या हालचाल है
1: जी। बहुत आप लिखे जो है मालिका जो है, आप सर बताइए कि आप अपना नाम बताइए। आप
0: मैं दीपक बोल रहा हूँ।
1: दीपक जी, ठीक है सर।
0: और अभी अभी कुछ देर पहले आंधी बारिश आई हुई थी, क्या कोई क्षति तो नहीं हुई?
1: ना नहीं सर, तो कुछ नहीं हुआ है, रोड साइड में हुआ है।
0: अच्छा, क्या है आज का आपका आपके आपका क्या है फरमाइश?
1: आज मेरी फरमाइश है धर्मवीर फिल्म का गाना।
0: अच्छा, धर्मवीर का
1: सर ने गाया है मोहम्मद रफी ने
0: जी।
1: और गाने का बोले मेरी महबूबा महबूबा महबूबा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सुनाएंगे सुनाएंगे। आप तो गा भी लेते हैं, आप तो दीवाना जी, आप तो गा भी लेते हैं बहुत बढ़िया। और आप हमारे आकाशवाणी आकाशवाणी के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: आकाशवाणी दरभंगा से बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे आपकी फरमाइश है, आपकी पसंद है, आपके अनुरोध है, बुलेल से गीत है
0: जी,
1: और उसके बाद अपनी अपनी पसंद है, बच्चों के प्रोग्राम हो गया, फुलवाड़ी, मन की बात,
0: आप
1: ये सारे बोले अगले बगैरे भी सुन लेते हैं।
0: तो आप करते
1: और
0: क्या है? करते
1: ऑटो चलाते हैं, TMT,
0: बिल्कुल। तो ऑटो CNG वाला, आप CNG वाले ऑटो आप चलाते हैं, तो क्या आपको उससे समय मिलता है, समय समय निकाल कर सुनते हो?
1: बहुत सारे समय मिल जाता है, रात का प्रोग्राम रहता है, कभी कभी सुन लेते हैं
0: जी।
1: और हेलो आकाशवाणी जी भी सुनते हैं, आपके पसंद प्रोग्राम जो है शनिवार रविवार और शुक्रवार को भी तीनों प्रोग्राम सुन लेते हैं।
0: तो ऐसा ऐसा ऐसा है, मेरी जिज्ञासा है कि जबकि ये मोबाइल का ज़माना है, लोग अक्सर मोबाइल पर लगे हुए रहते हैं, लोग टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और ऐसे समय में आप हमारे कार्यक्रम और एवं आकाशवाणी से प्रसारित अन्य कार्यक्रमों को आप सुनते हैं, और क्या आप ये सब कैसे हो जा रहा है?
1: अपना रोजी रोटी मिल रहते हैं
0: जी,
1: और उसके बाद प्रोग्राम भी सुन लेते हैं, मौका निकाल के समय निकाल करके सुन लेते हैं
0: जी।
1: दिल से मोहल जाता है कि प्रोग्राम भी सुन लेते हैं। और ये शिकायत भी है कि मैंने बराबर चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन हमारा चिट्ठी जो है
0: जी,
1: आपकी पसंद का है, आपकी फरमाइश में।
0: चलिए, आप आज आप आज आपके चिट्ठी आपके पत्र भी शामिल होंगे, निश्चित रूप से होंगे, बहुत सारे पत्र आते हैं। अब ये आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का ये स्नेह है, आज आपने फोन भी किया और आपका फरमाइश भी हम पूरा कर रहे हैं। और आइए हम सभी मिल करके आपकी फरमाइश पर धर्मवीर फिल्म का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुनते हैं। आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी
1: नमस्कार भैया
0: जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम बोल रहे हैं, कादिर अली बोल रहे हैं, नाहर मंटला जिला बिहार।
0: कादिर अली जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और अभी भी इस युग में, मोबाइल के युग में आप हमें सुन रहे हैं, और अब रेडियो सेट के अलावे तो आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से सुन रहे होंगे।
1: जी,
0: बिल्कुल। तो आज का जो इस कार्यक्रम, आज के इस कार्यक्रम में आपकी ओर से क्या फरमाइश है?
1: जानी दुश्मन फिल्म का गाना सुना दीजिए, चलो डोली उठावे कहाँ।
0: अच्छा, आपको पता है इस फिल्म में कौन कौन, इसमें बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां थी?
1: जी, सुनील और जितेंद्र।
0: जी,
1: बहुत सारे थे।
0: और बल्कि इन जो अभी आपने जो फरमाइश किया है, इस गीत की वजह से फिल्म जो है बहुत हिट किया था।
1: जी,
0: और ये बता दें कि आप बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग समय में सुनते आ रहे हैं।
1: जी,
0: बिल्कुल। दिन के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो आप सुनते हैं कि नहीं? दिन में
1: आप सुनते हैं, आपकी पसंद, आपकी फरमाइश जी भी करते हैं, आकाशवाणी।
0: जी, बिल्कुल।
1: और पत्र भी लिखते हैं?
0: जी, तो आपके पत्र में जो में आप लिखते हैं और आपके फरमाइश भी होते हैं, और
1: जी,
0: हम उसे पूरा भी करते हैं, भरसक कोशिश करते हैं। और आज जो आपका फरमाइश है जानी दुश्मन फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, तो आइए हम सभी मिलके आपके फरमाइश पर इस गीत को सुनते हैं। आपने फोन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अनमोल बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ जोरहाना से। जी
0: अच्छा, चलिए आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में।
1: आप आए हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। आकाशवाणी दरभंगा में मेरा कॉल लग गया, मेरा नसीब जाग गया।
0: आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आपके फ़ोन ऐसे ही लगते रहें। आपके आपके द्वारा भेजे गए पत्र भी हम लोग शामिल करते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आज के आपके द्वारा फ़ोन किए गए क्या फरमाइश हैं।
1: का बीते हुए लम्हों की कसर साफ होगी,
0: बिल्कुल
1: और इस
0: महेंद्र,
1: नगमे को हम सुनना चाहेंगे शेख जफर हसन साहब के साथ और मेरे एक दोस्त सरफराज उसके साथ।
0: जी, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ में।
1: जी बिल्कुल,
0: कहिए, और सब आप क्या करते हैं?
1: मैं तो सर फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ, अभी छुट्टी में घर आया हुआ।
0: अच्छा, बिल्कुल। अभी तो पूरे गर्मी का मौसम है और तापमान सर चढ़ के बोल रही है, और
1: मैं गुजारिश करूंगा अपने सभी कानून के सभी श्रोताओं से, गर्मी में खास ख्याल रखें,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: ज्यादा
0: बिल्कुल,
1: धूप में घर
0: और
1: से बाहर ना निकले,
0: बिल्कुल, और
1: घर
0: पानी,
1: से निकलते भी है तो पानी पी कर निकले, प्यास
0: बिल्कुल,
1: को
0: बहुत
1: बुझा
0: अच्छी
1: करें,
0: बात
1: या
0: कही,
1: सुबह शाम स्नान करें, सफाई का ख्याल रखें,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: और
0: बहुत
1: गन्ने का शरबत पिए।
0: बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। और आइए हम सभी मिल करके आपके जो फरमाइश हैं उसको सुनते हैं। निकाह फिल्म से महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ में आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आवाज हुआ।
0: आपकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही सर, इंदौर से। जी
0: अच्छा, इंदौर मध्य प्रदेश से। आप
1: जी
0: मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें आप सुन रहे हैं?
1: हाँ जी सुन रहे ना, अभी इसका निकाह का गाना चल रहा है।
0: बिल्कुल, निकाह का गाना आपको हम तो जी बिल्कुल अभी हम सुन रहे थे। और अभी आपके फरमाइश क्या
1: जाने
0: है?
1: अनजाने फिल्म का नाम और गाने के बोल है, तेरी नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए चल गए चल गए
0: वाह वाह
1: चल
0: वाह,

0: तेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए।
1: फिल्म जाने अनजाने के फरमाइश किए गए इस गीत के साथ ही फोन इन फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी अब यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है।

0: review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from Five Borders District will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medal today. And that's the end of the news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है आज की हमारी दूसरी सभा। इसी मीटर पर हम कल प्रातः 5:45 पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।